0: Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.
1: चांदनी राते, चांदनी राते.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.
3: जबरदस्त है.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: Cool Song.

0: दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: हमको कहते सुपरमैन ऑन कर लो हैंडीकैम
1: फ्रॉम एएम टू पीएम बंदे एट योर सर्विस मैन.
0: बेटा हल्के में ले रही थी कशिश हमें, हमने दिखा दिया आज.
1: आपको कोई हल्के में ले सकता है क्या?
0: बिल्कुल ऐसे थोड़ा. 106.3 किलो है मेरे.
1: ओ माय गॉड, मेंटेन करके चल रहे हैं क्योंकि
0: बिल्कुल कंपनी के लिए कुछ भी.
1: पर हम आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गए हैं.
0: जी जी बिल्कुल, यहाँ पे हम दोनों धुरंधर पहुंच चुके हैं आपके साथ वक्त बिताने के लिए, बातें करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, किस्से खबरें कहानियां शेयर करने के लिए. तो कुर्सी की बेटी जो है बांध लीजिए, हम जानते हैं छुट्टियां शुरू हो चुकी है, काफी आलस के साथ जो है आप जरा उठ रहे हैं, इधर उधर अपना काम जो है कर रहे हैं, मगर मैं यही बोलूंगा कि आलस वालस हटा के रखिए, आज भाई छुट्टी का दिन है तो एंजॉय करना है.
1: यस एग्जैक्टली, ईद वाली वाइब में जो है हम एंट्री मार रहे हैं. सो स्वैग से एकदम एंट्री मारेंगे और एकदम मजे कर देंगे यार.
0: बिल्कुल, मतलब यहाँ पे मजे करने के लिए हम मतलब
1: तैयार कलर कोऑर्डिनेटेड ऑफ आउटफिट पहन के तैयार होकर आए हैं.
0: 50 शेड्स ऑफ रेड. बिल्कुल
1: यस,
0: हम सब यानी कि ऑलिव में हम मॉर्निंग शो कर रहे हैं, मैं और कशिश रेड पहन कर आए, सुनू में मॉर्निंग शो कर रही है, निशा वो भी रेड पहन कर आए.
1: yes.
0: जब हम तीनों बाहर आए तो वो वाला स्पाइडरमैन का मीम देखा है आपने तब? वही चल रहा था यहाँ पे. बट हाँ देखिए, यहाँ पे बातें तो हम करेंगे ही करेंगे, किससे खबरें कहानियां सब सुनाएंगे, मगर आपके लिए प्यारे प्यारे गाने भी लेकर आए हैं. देखो अब तो मैंने छोड़ दिया ये सब सोचना, जिस पे आना आने दो. क्या फर्क पड़ रहा है, आगे वाले को भी तो लगना चाहिए.
1: अब तो देखो सब पे आ रहा है.
0: नहीं ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम ऐसे इतना भी आवारा नहीं हूँ. मैं
1: गाड़ियों की बात कर रही थी.
0: ओके ओके ओके, खेल गए. गुड वन.
1: गाड़ी सड़क पे चलती हर गाड़ी को देखिए, वाह यार क्या गाड़ी लग रही है, वाह यार क्या कार लग रही है, पता ये वाली कार ये, ऐसी सुनना पड़ता है.
0: अगर आपने ये नहीं बोला होता, एक्चुअली अगर आपने मेरे प्रमाइस के हिसाब से बोला होता तो शायद मैं अगला भी टीज कर देता.
2: बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया.
0: बट कोई बात नहीं,
1: दुनिया बसाने की घर बसाने की बातें आपकी उम्र में शोभा देती है. सही है, पहले गाड़ी ले लीजिए.
0: वैसे घर में क्या बोल रहे हैं? अरे प्ले क्यों नहीं हो रहा ये? कभी कभी सिस्टम भी हमारे साथ थोड़ा ना नॉटी हो जाता है,
1: नॉटी हो जाता है, खेल जाता है. एंड ये गाना वो है जो सुदेव के पास नहीं है.
0: ये गाना एक्चुअली हाँ मेरे प्लेलिस्ट में तो नहीं है, बट ये नया नया ऐड हुआ है.
1: अरे आपके पास माशू का भी तो नहीं है. खड़ा हूँ आज भी वही.
0: नहीं आज हम खड़े नहीं बैठे हैं सीट में. सुबह सुबह लोग सोच रहे हैं क्या हो गया,
1: क्या हो रहा है?
0: आपकी छुट्टी हमारी नहीं है, यही हुआ है बस. आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश.
0: और यहां पे भाई आपके मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए. 3311063 पर आप मैसेज कीजिए, बताइए हमें कि छुट्टियों में क्या क्या करने का इरादा है और कैसे स्पेंड करने का इरादा है, ईद की तैयारियां कैसी चल रही है, सब डिटेल में मैसेज कीजिए हमें 3311063 पर. और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, कॉकटेल 2 का गाना सुनते हैं महमूद और राघव चैतनी की आवाज में. स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम.
1: See you in the ass.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान।
4: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल।
3: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस। तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में, योर ultimate Eid destination.
5: Hi, this is Air Rahman.
6: Air Rahman.
5: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
6: Jio Bindas.
7: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network. I'm in a-

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: लुका छुपी का गाना हमने सुना अखिल और ध्वनि भानुशाली की आवाज में। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: तो भाई यहाँ पे हमारे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं, एक एक करके जरा देखते हैं। नाजनी जी का मैसेज आया है, लिखा है, गुड मॉर्निंग, विशिंग यू अ फैंटास्टिक डे अहेड फिल्ड विद पॉजिटिव एनर्जी, स्मॉल विक्ट्रीज एंड प्लेंटी ऑफ रीजंस टू स्माइल, गो सीज द डे करके।
1: बिल्कुल, प्लेंटी ऑफ रीजंस तो हमारे पास हैं, आप सबके मैसेजेस और क्या कर सकते हैं
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। सिमिलरली हमारे पास जो एक और मैसेज आया है अनिल जी का, उन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा है एंड दिखाया कि हैव अ ब्लास्ट करके। जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों तैयार होके पहुंच चुके हैं। और खास बात यह है कि आज जो है ईद मजलिस हम सेलिब्रेट करने वाले हैं कुछ लकी लिसनर्स के साथ, सेलेक्टेड लिसनर्स के साथ। हम जो है आज कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट में जाएंगे, ईद मजलिस सेलिब्रेट करेंगे। तो एक्साइटमेंट तो बिल्कुल है,
1: बिल्कुल एक्साइटमेंट है, पूरी तैयारी है, बस आपका इंतजार है।
0: क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। उसके साथ साथ मुझे एक और बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है और लिखा है कि सुबह सुबह आप दोनों की आवाज सुनकर जो ऊर्जा मिलती है बहुत ही बढ़िया है, थैंक यू सो मच हमारे दिन को बढ़िया बनाने के लिए, बिंदास बनाने के लिए करके मैसेज भेजा है हमें। उन्होंने नाम नहीं लिखा, बस इनके हैंडल में 3 स्टार बने हुए हैं। मैं क्या बोलूं, देखो अगर हम रैंक के हायरार्की के हिसाब से जाए तो 3 स्टार जो है आर्मी में कैप्टन होता है।
1: ओके कैप्टन साहब,
0: कैप्टन साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
1: आई कैप्टन
0: बट नेवी में कैप्टन रैंक अलग होता है।
1: अच्छा,
0: तो कंफ्यूजन हो गया ना?
1: नहीं कंफ्यूजन नहीं हुआ, जिसमें भी कैप्टन आता है
0: चलता है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। बट एनीवे थैंक यू सो मच ये मैसेज करने के लिए। उसके साथ साथ मैं ये बता दूं, थोड़ी देर में हम जो एक सवाल लेकर आ रहे हैं और ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में एक बहुत ही क्यूट सा सवाल होगा, देखते हैं कि आप 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कशिश से कितने तेज है। क्या आप तैयार है?
1: मैं तो तैयार हूँ, मुझसे स्मार्ट नहीं हो पाएंगे।
0: अरे क्या बात कर रही आपने, तो चलिए इसी खुशी में सुनते हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर और कहते हैं
1: जी अविंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: अभी के मौसम में रूफ में जाना मुश्किल है क्योंकि रेन नहीं है, अगर रेन है तो बस गर्मियों की ही है,
1: पसीने की रेन है।
0: और इस धूप में जाके, मतलब अभी की धूप में नहीं, अभी तो ठीक है, बट कुछ लोग विटामिन डी लेने के चक्कर में दोपहर की धूप में जाके एकदम छत में खड़े हो जाते हैं।
1: ये सुदेव अपने बारे में बात कर रहे हैं।
0: नहीं करता बिल्कुल।
1: सुबह जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकल रहे थे आने के लिए, वो धूप सेक रहे थे।
0: हाँ, वो सुबह की,
1: ये सुबह वाली धूप तो अच्छी है।
0: हाँ, बाकी बोलो।
1: पर ये आपको अभी रियलाइज हुआ ना, पहले खड़े होते थे ना?
0: कब? दोपहर को? नहीं, दोपहर को नहीं खड़ा होता मैं। मैं कभी दोपहर को, अरे बाहर ही नहीं निकलते थे हम दोपहर को।
1: टैनिंग देख के मुझे लगा।
0: या टैनिंग, ये क्या करो यार, मैं ना थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है। मैं शाम को जाता हूँ ना, 3:30 के टाइम पे निकलते हैं।
1: हाँ, राइट।
0: तो टैनिंग हो जाती है वैसे, नहीं तो हम कहाँ धूप में निकले, क्या बात कर रहे हो। बट मैं टैनिंग के बारे में अपने बात छेड़ ही दी है तो बताना चाहूंगा कि जब मैं कॉलेज में गया था ना, तो जब मैं थर्ड ईयर में हुआ तो मेरे एक सीनियर जो थे फोर्थ ईयर में, उन्होंने मेरे से बोला कि भाई क्या हो गया तुझे। मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोले जब तू यहाँ आया था, ठीक है, एक तो तू थोड़ा चौड़ा था, ठीक है, दूसरा तू बहुत गोरा था, अभी क्या हो गया, अपने साइज का आधा हो गया तू, और बहुत टैंड हो गया, क्या हो गया। मैं फिर हम बास्केटबॉल खेलते थे तो शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे भाग दौड़ होती रहती थी। और कॉलेज मतलब मेरा जो था छोटे से हिल टॉप के ऊपर सा था, तो धूप बहुत ही इजिली मिल जाती थी हमें, बाकी बाकी जगह पहुंचने से पहले हमें
1: सबसे पहले प्राइम सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ था, देखिए आपने धूप का।
0: तो फिर बाहर आना जाना होता था। हाँ। क्लास में बैठते तो थे नहीं हम,
1: राइट,
0: उस टाइम पे तो फिर बहुत टैन हो गए,
1: वो तो पता चलता है।
0: तो मैंने अपने हाथ में एक चीज बांधी हुई है।
1: हाँ, मैं कल ही जो है ये अपने हाथ के एक बैंड से जो है खेल रहे थे, तो मैं कल ही पूछने वाली थी कि सुदेव एक बार जरा थोड़ा सा हटा के दिखाओ कि कितना टैन आया है।
0: बहुत ज्यादा टैन आया है, मुझे लगता है 3-4 टोन तो कम ही हो गया है। बट या टैन को छोड़िए, आप यहाँ पे जो है
1: 10, 11, 12 की बात करते हैं। क्या आप 10th, 11th, 12th और कशिश कितने स्मार्ट है? ब्लैक बोर्ड स्टोरी में आज के सवाल की बारी आ चुकी है गाइस।
0: जी हाँ, आज जो है हम ज्योग्राफिकल सवाल पूछेंगे, मगर अभी वक्त आ चुका है अपने देश वापस जाने का। पधारो नहीं हमारे देश। तो इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, ये आपको बताना है। इस सवाल का जवाब आपको भेजना है 3311063 पर, तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले, अभी के अभी आप मैसेज कर दीजिए और देखते हैं हम कि आप कितने स्मार्ट हैं, 10th, 12th
1: इंटेलिजेंट हैं, अटेंटिव हैं, अमेजिंग हैं, अट्रैक्टिव हैं।
0: क्या बात बहुत अट्रैक्टिव बीच में कहा से आ गया?
1: अरे जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो अक्सर अट्रैक्टिव होते हैं, आपको नहीं पता होगा।
0: अच्छा, तो आप भी तो नहीं हो फिर, क्यों इतना बोल रहे हो?
1: तभी तो आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ।
0: मैं भी, मेरा लेवल भी वैसे बहुत गिर चुका है गाइस, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम केके की आवाज में मर्डर 3 का गाना प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप जवाब भेजिए हमें 3311063 पर, और यही बोलते हुए गाना प्ले करते हुए कहते हैं
1: जियो विद अस।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव।
1: मैं हूं आपकी कसर सारा हंसो मुस्कुरा लो। जब मैं पहली बार ये कहने वाली थी कि कोई गाना है जो मेरे पे बना हुआ है, ओ माय गॉड सी कुड़ी चमकीली मेरे लिए गाना आया हुआ है, तभी आपको
0: नहीं, बट अगर आप ये बोलते तो मैं मानता ही नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि आप जीके से नहीं हो, आप भोपाल से हो।
1: मैं जीके की तरफ से नहीं हूँ।
0: तो देखिए, ये बहुत ही लेयर्ड एक स्टेटमेंट था। जिन्हें पता है उन्हें पता है। बढ़िया। यहाँ पे एक सवाल हमने पूछा था कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है कौन सा है, माउंटेन पीक कौन सा है, और हमारे पास जो है थोड़े जवाब आए हैं। हमारे पास दीपक जी ने मैसेज किया है, उन्होंने बोला है कंचनजंगा, और उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया है उसमें K2 लिखा हुआ है।
1: मैंने भी K2 ही कहा था by the way,
0: और भी कुछ मैसेजेस आए जिसमें कंचनजंगा और K2 करके कंफ्यूजन आया है। तो मैं बता दूं कि जिन्होंने कंचनजंगा लिखा है सही जवाब। बहुत रीचेक किया है कि कहीं गलती ना हो जाए भाई।
1: पर काफी सारे लोगों को ये भी लगता है, मुझे उस उन लोगों में इंक्लूड करके, कि K2 और कंचनजंगा एक ही
0: नहीं, नहीं ये कंफ्यूजन था, पहले होता था, मुझे भी हुआ था, बट दोनों अलग अलग हैं। K2 को हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं।
1: ओके,
0: ठीक है, ये भी एक नाम है K2 का। बट या कंचनजंगा है सही आंसर, और आप लोगों ने सही जवाब दिया, आपके लिए तालियां बजाई हमने। उसके साथ साथ एक बहुत ही प्यारी बात जो है आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं, और बहुत ही बढ़िया बात है जो आपके साथ शेयर करेगी हमारी कशिश्वा मैडम।
1: अच्छा?
0: कशिश्वा मैडम बता दीजिए प्लीज, क्योंकि ऐसी बात, इतनी सुनहरी बात गोल्डन गर्ल ना करे तो कौन करेगा।
1: Exactly, और मैं हूँ आपकी गोल्डन गर्ल, और आपके पास भी मौका है स्मार्टली शाइन करने का इस सीजन में, क्योंकि देखिए क्योंकि इंडिया में जो है वो रेट्स गोल्ड के जो है उनमें काफी चेंजेस आए हैं। सो आप अपनी ओल्ड ज्वेलरी को जो है, जो आपने कहीं से भी परचेज करी है, उसे डार्जिलिंग न्यू डिजाइन के लिए जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, और सिर्फ मेकिंग चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। और अब एक और ग्रेट न्यूज जो है वो आपके लिए बिल्कुल तैयार है, इम्पोर्ट ड्यूटी जिसकी मैं बात कर रही थी इंडिया में।
0: अच्छा?
1: उस पे रिविजन हुआ है, सो अब आप 15% तक जो है सेव कर सकते हैं गोल्ड प्राइजेस में कतर में। सो अब जल्दी से जल्दी पहली फुर्सत में छुट्टियों का पूरा फायदा उठाते हुए अपने नजदीकी मलाबार गोल्डन डायमंड स्टोर पे जाइए, और जाकर अमेजिंग वाली गोल्ड ज्वेलरी डार्जिलिंग डिजाइन के साथ परचेज कर लीजिए।
0: बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। मैं बस यही जान के अचंभित हूँ, अचंभे में हूँ कि आप इतने सुनहरे इंसान कैसे हो जाए।
1: बस सुनहरे लोगों के साथ आजकल उठना बैठना है हमारा, आपके साथ जो है शो वो कर रहे हैं, तो बस थोड़ा सा ऐसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है।
0: हाँ हाँ, आप मोटा बोल रहे ना मुझे।
1: तो हम गोल्ड
0: बोलना चाहते ना, आप वेट शेम कर रहे हो मुझे, और लाल रंग भी पहन के आ गया आज मैं।
1: मैं भी पहन कर आई हूँ।
0: सो
1: आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जा सकते हैं, वहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ स्टोरी तो देखो अपलोड करेंगे ही अभी, तो हमारे कोऑर्डिनेटेड आउटफिट्स आप देख सकते हैं वहाँ पे, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बस बाकी इंजॉय कीजिए और बताते रहिए हमें कि कैसा चल रहा है।
0: फिलहाल यहाँ पे नकाश अजीज और श्रेया घोषाल की आवाज में सुनते हैं स्लो मोशन में।
1: स्टे ट्यून्ड,
0: रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
1: जी बिंदास।

0: दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास। मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: कितना खूबसूरत गाना है ये. ठीक है, एक बहुत ही अलग लेवल की रूहानियत इस गाने में है. मगर अचंभित कर देने वाली बात ये है कि ये गाना जो है स्टूडेंट
1: टू का है और इसमें अनन्या पांडे टाइगर श्रॉफ है.
0: और मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये क्या माया है, ऐसा क्यों, मतलब इतना प्यारा गाना.
1: यार बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो अच्छा होना चाहिए स्क्रीन पे.
0: व्हाट्स, क्या बात कर दिया आपने. बहुत अच्छा.
1: Yes.
0: काफी ज्ञानियों की तरह आप जो है बात कर रहे हैं. क्या
1: आपके साथ बस रहे कि थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा है. अच्छा है.
0: बहुत अच्छा, बहुत
1: कि देखो
0: अच्छा.
1: जैसे अगर शक्ल अच्छी नहीं होती तो फिर हम कपड़े अच्छे पहन लेते हैं.
0: जी आप दोनों नहीं कर रहे क्या?
1: एक्सक्यूज मी,
0: सॉरी मेरे मुंह से निकल गया भैया, सॉरी.
1: देखो सुदेव, मेरे साथ तो ऐसे बात करो चल जाएगा.
0: हाँ.
1: इसीलिए आप जो है सिंगल हैं.
0: हाँ.
1: और इसीलिए लड़की नहीं मिल पा रही आपको, क्योंकि आप लड़कियों से ऐसे बात करते हो.
0: नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं सच बोल
1: रही हूँ, मैं लड़कियों से अच्छे से बात करता हूँ, मैं आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आप ब्रो फील देते हो.
0: नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं बस उस स्टेटमेंट को काउंटर कर रहा था. बट मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत ही खूबसूरत है कशिश.
1: कुछ भी, आप कवर नहीं कर सकते आप.
0: बट आप मुझे ये बताइए,
1: जी
0: कमबैक कैसा था? वो
1: कमबैक बहुत अच्छा.
0: अच्छा था ना, बस वही मैटर करता
1: है. 9th क्लास का कमबैक था, 9th क्लास का.
0: अब आप 8th क्लास वाली चीजें बोलोगे तो 9th का कमबैक ही मिलेगा. हरकतें भी तो सुधारो ना फिर.
1: हम दोनों की हरकतें नहीं सुधर पा रही हैं बिल्कुल इस मौसम की तरह. ये जो है दिन ब दिन जो है खराब होता जा रहा है,
0: गर्म होता जा रहा है.
1: गर्म होता जा रहा है.
0: मौसम इज नॉट मौसमिंग
1: एनीमोर.
0: इट इज एक्चुअली बिकमिंग हॉट. Not the hot that we want.
1: Yeah.
0: But अभी जो है 31 degree Celsius का temperature है, वैसे कम है देखा जाए तो. कल इससे ज्यादा था
1: comparatively कम. हाँ. है, लेकिन गर्मी हमें लग रही है.
0: जी बिल्कुल. और आज का lowest temperature ही 31 degree Celsius है और आज का highest जाएगा 42 degree Celsius. और अभी हवाएं जो है 13 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है. और यहाँ पे मैं यही सवाल पूछूंगा कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी?
1: इस हवा में इतना दम नहीं कि आपको उड़ा के ले जाए. और कल ना मुस्कान अपने शो में एक बात कह रही थी कि जैसे ही आप बाहर पैर रखो ऐसा लगता है कोई गरम गरम वो हेयर ड्रायर जो है आपके मुंह पे मार रहा है.
0: होता है.
1: एंड मैंने सच में जब मैं कल बाहर निकली मैंने रिलेट किया कि हाँ वो ऐसा तो हो रहा है.
0: बिल्कुल हो रहा है ना. तो दोपहर को नहा के अगर बाहर खड़े हो जाओ
1: तो लू लग जाएगी. मत करना कोशिश.
0: देखो हवा जो है 13 किलोमीटर की पर आवर की रफ्तार से बह रही है.
1: बाल सूखेंगे नहीं, बाल उड़ जाएंगे. देखो
0: और मेरे मन में यही गाना चल रहा है. देखो मई के महीने में 13 किलोमीटर. मुझे पता है इट डजंट मेक एनी सेंस.
1: इट मेक्स इट्स यू एंड मी. इट मेक्स सेंस.
0: देखो एट द एंड ऑफ द डे इंसान जब वापस जाता है, ठीक है, बिस्तर में जाता है, सोने के लिए. हाँ. जाता है, जब वो इसे रिकलेक्ट करता है कि मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या नहीं किया, चीजों का हिसाब लगाता है. तो उस हिसाब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि मुझे किन किन चीजों ने हंसाया, किन किन चीजों ने अच्छा फील कराया.
1: हम चाहते हैं कि आप जितनी बार याद करें हम दोनों को जरूर याद करें.
0: बिल्कुल याद करें कि ये क्या हंसाया इन्होंने इनके. तो फिलहाल यहाँ पे तुषार जोशी की आवाज में चांद मेरा दिल का गाना सुनते हैं और कहते हैं
1: जी अविनाश.

0: शाश्वत और पूर्वी की आवाज में संजू मूवी का गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कसुर।
0: स्टेशन क्लॉक में 7:21 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास एक मैसेज आया है सामी भाई का। सामी भाई ने मैसेज भेजा है और उन्होंने जो है मैसेज करके बोला है कि अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई और कशिश, कैसे हैं आप दोनों? ईद मुबारक इन एडवांस। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक भाई। और फोटो भेजा उन्होंने, सूरज चाचू जो है चमक रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से,
1: एकदम
0: ब्राइट तरीके से चमक रहे हैं। थैंक यू सो मच सामी भाई ये फोटो भेजने के लिए। देखिए जब आप ऐसे फोटोज भेजते हैं तो हम भी नजारे देख लेते हैं थोड़े थोड़े,
1: वरना स्टूडियो में बिना खिड़की के बैठे बैठे सैड हो जाते हैं,
0: बस हम एक दूसरे का चेहरा ही देख पाते हैं। बट हाँ मतलब इतने
1: पर कोई बात नहीं। हाँ सुदेव के लिए तो मैं खुश फील करती हूँ, उन्हें जो है चांद देखने का मौका मिलता है रोज।
0: जी फोन में मैंने वॉलपेपर लगा रखा ना तो मैं चांद क्या चांद से कंपेयर कर रहा हूँ। आप तो गोल्डन गर्ल हो, सूरज का तेज है आपके चेहरे पे।
1: थैंक यू सो मच।
0: क्या बात,
1: आधी नींद में जो मुझे बीच में उठाते कि ओ उठो टाइम हो गया बात करने का, गाना खत्म होने वाला है। ये जो सच्चाई है देखो हम ही जानते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन बस छुट्टी का जो है माहौल चल रहा है तो हमने सोचा आपको बता देते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बता देते हैं। देखिए अभी तो फन माहौल है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज के बारे में हम जानते हैं, वैसे ही अगर रेडियो के स्टूडियोज में अगर कैमरा लगा के ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया तो ऐसी ऐसी चीजें आप
1: तो
0: देखेंगे।
1: लोग हमारी इज्जत करना बंद कर
0: देंगे। क्या हो रहा है
1: ये जो पैर के ऊपर पैर रख के आलती पालती मार के मैं बैठी हुई हूँ।
0: कभी कभी क्या होता है, मुझे याद है एक बार मैं केरला में था, ऐसे ड्यूअल शो कर रहा था तो मैंने माइक पूरा खींच के ना स्ट्रेट कर दिया।
1: हाँ।
0: ठीक है, हॉरिजॉन्टली मैंने स्ट्रेट कर दिया और मैं नीचे मतलब माइक के नीचे जाके ऐसे लेट सा गया चेयर को पीछे करके, फिर मैंने किया टॉक तो जो मेरी जो कोजॉक थी वो बोली क्या हो गया तुझे? मैंने बोला भाई बहुत नींद आ रही है। बस ये देखो माइक अगर इधर उधर हिल सकता है तो हम भी कर सकते हैं,
1: हम भी कर सकते हैं।
0: ठीक है, जब माइक स्टैटिक नहीं है तो हम क्यों स्टैटिक रहे। तो यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में हम आएंगे फिट है तो हिट है लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे आप गाने सुनिए, एंजॉय करिए और कहते रहिए
1: जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: India's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान।
4: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल।
3: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टैक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस। तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में, योर Ultimate Eid Destination.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: उदित जी और आशाता की आवाज में सुना हमने यादें मूवी का गाना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशन।
0: और यहाँ पे भाई बहुत ही बढ़िया चीज जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, फिट है तो हिट है में, तो चलिए शुरू करते हैं।
2: फिट है तो हिट है,
0: तो फिट है तो हिट है में आज हम बात करेंगे पुअर स्लीप और हंगर हॉर्मोन्स के बीच में क्या रिश्ता है, क्या है वो रिश्ता,
1: रिश्ता क्या कहलाता है।
0: वो सीरियल्स में जो साउंड वो आता है ना, वो हमें डाउनलोड करके रखना है आपसे, तब जाके वो इफेक्ट आएगा। अभी फिलहाल आप देसी बॉयज का ही सुन लो। बट यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि नींद सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं है बल्कि एपेटाइट कंट्रोल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती हमें तो बॉडी के हंगर रिलेटेड हॉर्मोन्स जो हैं उनमें इंबैलेंस हो सकता है। और दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं, ग्रेलिन जो हंगर को इंक्रीज करता है और लेप्टिन जो ब्रेन को सिग्नल देता है कि पेट भर गया। अब स्लीप डिप्रिवेशन के बाद क्या होता है, ग्रेलिन लेवल इंक्रीज हो सकता है, लेप्टिन लेवल रिड्यूस हो सकता है। रिजल्ट क्या है, ज्यादा भूख लग सकती है और शुगरी या फिर हाई कैलोरी फूड की क्रेविंग बढ़ सकती है, फुलनेस जो है लेट फील हो सकता है। इसलिए पुअर स्लीप जो है इनडायरेक्टली ओवर ईटिंग और वेट गेन रिस्क को जो है इंक्रीज कर सकता है।
1: तभी मैं सोचूं कि मुझे इतनी भूख क्यों लगती है जिससे मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती है।
0: एग्जैक्टली,
1: अब आ गया मेरे को समझ।
0: और मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा नींद से कोई लेना देना नहीं, मुझे बस परपेचुअली लगती है भूख ज्यादा। और रिसर्च ये भी सजेस्ट करता है कि स्लीप डिप्राइव्ड ब्रेन जो है जंक फूड को एक रिवॉर्ड जैसा कंसिडर करता है और उसे ज्यादा सेंसिटिव भी हो जाता है। और शॉर्ट में बात यही है कि भाई कम नींद बॉडी को और एनर्जी चाहिए सिग्नल देती है, इसलिए हंगर और क्रेविंग्स जो है नेचुरली बढ़ जाते हैं।
1: ये बात तो देखो सही है, जब आप नींद कम लेते हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को लगता है कि भाई डल लग रहा है, लो लग रहा है और जो
0: नींद आ रही है, थकान बट वो भी बहुत लगी है,
1: तो कुछ अच्छा खिला दो ताकि दिन के लिए मोटिवेट हो जाए।
0: हाँ, और जिंदगी में भी थोड़ा मोटे
1: देखिए ऐसे वर्ड्स जो है इब्लीस वर्ड्स की का यूज हम नहीं करते
0: जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा किया आपने। और यही बात बताते हुए हम जो है आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है हमारे पास विजिट कतर के बारे में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी ही देर में। अभी फिलहाल यहाँ पे हाल दिल मूवी का गाना सुनते हैं और कहते हैं
1: सी यू बिंदास।

0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।

0: दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
1: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
3: Imran bhai, Eid Mubarak.
4: Eid Mubarak.
5: Taufik chacha, Eid Mubarak.
6: Aap?
5: Chacha, main Ibrahim.
4: Har Jumrat aata hu.
5: Tumhari biryani khane ko.
6: Arey miyan, Taufik chacha ko kuch bhi yaad nahi. Tab aap bhul gaye. Biryani bhi.
7: Ek kaam karte hain. Is baar biryani hum bana kar khilate hain.
8: हेलो हेलो तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां क्यों चचा
9: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ
10: एक मिनट रुको एक बात शायद आप भूल गए बेटा ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांट

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Selva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki toh baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में।
7: हाय मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
8: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
9: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
10: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: काश धड़कन मूवी के सुनील शेट्टी ने ये गाना सुन लिया होता। काश
1: मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं की एक्सपीरियंस के बाद ये गाना लिखने की जरूरत पड़ी होगी कि यार ये तो काम खराब कर रहे हैं लड़के,
0: ये स्टार बनने की कोशिश में।
1: कितना प्यार से बोला, मैं माना हूँ लड़का छोटे घर का, जेब से हूँ कड़का, पर लड़का बड़ा ही नेक हूँ।
0: क्या
1: खूबसूरती से कहा है,
0: विनम्रता के साथ जो कहा है, वाह वाह मानना पड़ेगा। देखिए यही तो है जिंदगी में, जितना हम विनम्र रहेंगे उतने हमारे लिए मौके आते रहेंगे।
1: सामने वाला सोचेगा एटलीस्ट कुछ नहीं है, पर सच्चाई तो है इंसान में।
0: हाँ वही तो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। और अभी यहाँ पे हमें मैसेज आया है मनोज भाई का। मनोज भाई ने लिखा है टुडे इज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एट लुसेल सिटी करके उन्होंने एक फोटो भेजा। थैंक यू सो मच। काफी बढ़िया फोटो, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोग जो है छुट्टियां बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। सड़क में दूर दूर तक
1: सिर्फ दो गाड़ी
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मोहम्मद यूसुफ खान साहब का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग सुदेव एंड कशिश, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल जी, बिल्कुल बढ़िया हैं हम दोनों,
1: बढ़िया।
0: और आप बताइए क्या हाल है, क्या चल रहा है सब कुछ, ईद की तैयारियां कैसी चल रही है, मैसेज कीजिए जरा हमें। और उसके साथ साथ हम बता दें कि आज जो है ऑफिशियल रेस्ट डे है हमारा, नहीं लीग का, क्रिकेट लीग का, टी20 लीग का, क्योंकि आज कोई नहीं, कल था एक्चुअली, आज मैच है।
1: हाँ, आज मैच है एंड उसके बारे में बात करेंगे आगे, इसलिए मैं बोल नहीं रही थी।
0: जी तो कल था ऑफिशियल रेस्ट डे, रेस्ट सब खत्म हो चुका है, अब जो है मुकाबला होगा।
1: मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो यार आप?
0: अब याचना नहीं रन होगा
1: गाइस, रन पे रन जो है वो लगाए जाएंगे, 4 sixes, ये ये ये।
0: वाह क्या बात कर दी, इतना एक्साइटमेंट विराट कोहली को भी नहीं होगा जितना यहाँ पे कशिश को है। विराट भी सोचेगा अरे थम जा बहन।
1: हाँ क्या, अनुष्का भाभी को बिठा के घर पे, एक काम करते तो तुमको स्टेडियम पे ले आता हूँ मैं।
0: हाँ बिल्कुल। बट देखिए फिर वो दिक्कतें हो जाएंगी, क्यों फालतू में हम।
1: हाँ फालतू में फिर रील्स कैसे कटेगी यार।
0: जी बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है।
1: रील्स इम्पोर्टेंट, देखिए कोई भी जीते, रील्स इम्पोर्टेंट है, रील्स कटनी इम्पोर्टेंट है। बाकी आपके ईद की तैयारियां कैसी चल रही है, कुछ कपड़ों का ट्रांजिशन आपने ट्राई किया है नहीं किया, सेव करके रखा है नहीं रखा, बताओ यार, हमारा भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मस्त कितने बढ़िया कपड़े पहनकर आए हैं आज, चमकीला एकदम कुर्ता, कि एक बार कोई उस पर टॉर्च मार दे तो ऐसे चारों दिशाओं पे,
0: रात को बाहर जाते अगर किसी ने मेरे पे हाई बीम मार दी भाई वो गया,
1: रिफ्लेक्टर लग रहे हैं पूरे एकदम।
0: आज तो गया, आज चौंधियां जाएंगी उनकी आंखें अगर रात में किसी ने हाई बीम मार दिया तो। मेरा कई बार मन करता था जब मैं जाता था रात को ट्रैवल करते वक्त, यहाँ पे नहीं केरला में, एक टाइम पे हाईवे से तो जब ट्रैवल करता था ना, तो दिक्कत ये थी कि जो बाइक मैं चलाता था उसका हेडलैम्प खराब था, तो उसकी रोशनी है कि नहीं चेक करने के लिए मुझे अपना हाथ ऐसे हेडलैम्प के आगे रखना पड़ता था तो ये हालत थी उस बाइक की।
1: चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है, अब हम साइकिल पे आ गए हैं, बाइक से बिना हेडलाइट वाली,
0: क्योंकि साइकिल इज हेल्थी गाइस, साइकिल चलाना आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना हम क्या कहते हैं गाड़ियों से दूर रहेंगे, हम अपने पृथ्वी को भी जो है थोड़ा सेफ रखेंगे। कार्बन एमिशन इज अ रियल थिंग गाइस, टेक केयर ऑफ इट।
1: काफी है अपनी वो छुपाने के लिए जो आपने मोरालिटी का एक झंडा उठाया है,
0: गरीबी छुपाने के लिए क्लाइमेट एक्टिविज्म तो हम कर ही सकते हैं, और यही बार बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
2: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव,
1: और मैं हूँ आपकी कशिश.
0: और यहाँ पे भाई कशिश इतनी ज्यादा एक्साइटेड है आज
1: कि
0: विराट कोहली ने बॉलिंग प्रैक्टिस बैटिंग प्रैक्टिस छोड़ दी. बोला अब नहीं भाई, क्या इतना एक्साइटमेंट हो चुका है.
1: दुआएं कर रही हूँ इतना. हाँ. आपने अपनी लकी टी शर्ट, अपने लकी जूते, अपना लकी पिल्लो सब लेकर बैठ चुकी हूँ कि भाई आज. हाँ. मैच जो है वो ऐसी हालत में देखूं कि कुछ रह ना जाए.
0: बिल्कुल, अब कंबल भी ओढ़ के सो भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं.
1: अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है देखो मैच में, थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं,
0: अनहोनी जैसा कुछ हो गया. हाँ.
1: तो फिर मैं कंबल ओढ़ के सो भी सकती हूँ. देखो
0: जी हाँ, कोई बात नहीं. देखिए मैं तो यही बोलूंगा कि क्रिकेट की जीत होनी चाहिए,
1: क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, बस यही कह
0: रहे हैं. गई वैसे
1: तो अब तो देखो सुदेव तो आउट उस पे आ गया है
0: आज भी वही.
1: बस भाई. हाँ, कोई बात नहीं होता ऐसा. सो आज क्वालिफायर वन जो है वो खेला जाना है गुजरात और बैंगलोर के बीच में.
0: जी हाँ, और जैसे कि हमने आपको बताया है कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो है 17 बार आरसीबी ने जो है मैचेस खेले हैं, यहाँ पे बैंगलोर ने मैचेस खेले हैं प्लेऑफ के, जिसमें 6 बार वो जीते हैं.
1: yes.
0: और 11 बार हारे हैं. अगर हम गुजरात की बात करें तो 5 बार उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं उन्होंने टोटल, इसमें
1: तीन जो है
0: वो जीते हैं.
1: सो देखते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, रेशो के हिसाब से तो ना ही जाए तो बेहतर है.
0: जी जी बिल्कुल वही, हम स्टैटिस्टिक्स पे ना जाए, हम भाग्य पे और इस सीजन के फॉर्म के हिसाब से जाए तो देखते हैं. और देखिए दोनों टीम टक्कर की टीम, दोनों बहुत ही बढ़िया टीम्स है, दोनों ने पॉइंट टेबल में सेम पॉइंट्स लिए हैं. रन रेट का थोड़ा सा फर्क है जिससे बैंगलोर आगे आ गई,
1: वो भी ऐसा कुछ ज्यादा मेजर फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में जो भी जीतेगा बहुत अच्छा परफॉर्म करके जीतेगा, क्रिकेट की अल्टीमेटली जीत होगी.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो आज हमें पता चल जाएगा कि इस टूर्नामेंट में फाइनलिस्ट जो है, पहला फाइनलिस्ट जो है वो कौन होने वाला है. सो बस फिंगर्स क्रॉस, अपनी अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते रहिए. 3311063 हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है,
0: बताइए.
1: अगर बता दीजिए कि आज कौन जीत सकता है,
0: बैंगलोर या गुजरात, आप बताइए आपके प्रेडिक्शंस क्या हैं. फिलहाल यहाँ पे हम शफकत अमानत अली की आवाज में सुनते हैं यारियां मूवी का एक बहुत ही प्यारा गाना. स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: जियो बिंदास.

0: Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler. इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
0: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
0: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में। बिंदास
3: मॉर्निंग, Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grow.

0: जी मैं हाँ हरभजन मान तुम सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: इतना दर्द, इतना दर्द,
1: ओहो
0: क्या बताऊं मैं, पीठ में दर्द,
1: हाँ,
0: घुटनों
1: में दर्द, घुटनों में दर्द।
0: अगर ऐसा है तो भाई एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो आप कर सकते हो ये नापतोल का ऐड जैसा नहीं,
1: हाँ? मतलब कि ये क्या बात
0: हुई? नहीं बट मैं एक उससे रिलेटेड एक चीज में बताऊंगा थोड़ी देर में, बट अभी फिलहाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ये बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव,
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे भाई टेक्नोलॉजी के बारे में एक चीज हम बताना चाहेंगे। देखिए कुछ टाइम पहले जब हम आईफोन के बारे में बात कर रहे थे, आईफोन के नए लॉन्च के बारे में बात कर रहे थे, हमने बोला था कि कुछ कलर्स के बारे में थोड़ा जो है हमें आइडिया लगा है, और अभी जो है कुछ केसेस के इमेज जो है रिवील हुए हैं हमारे कुछ खास सूत्रों के द्वारा, हमें उनके कलर्स का पता चला है, जिन्होंने एप्पल के 2026 फ्लैगशिप फोन के कलर वेरिएंट्स के जो रूमर्स फैल रहे थे उनको थोड़ा और सॉलिड कर दिया है। हाँ। और बहुत सारे जो है जो एंटिसिपेटेड समर सेप्टेम्बर लॉन्च है आईफोन 18 प्रो का, वहां पे उसके कवर के जो कुछ नए लीक्स आए हैं उससे हमें यही दिख रहा है कि एप्पल जो है नए कलर्स के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और इवन अपने एक्सेसरीज में भी जो है वो इंक्लूड कर रहा है। यूजुअली आपने देखा होगा जब भी हम एप्पल का फोन लेते हैं, आईफोन लेते हैं, तो जब भी कवर लगाते हैं तो उसका जो कलर है वो छुप जाता है,
1: छुप जाता है,
0: तो नहीं आ पाता बाहर। तो भी उस चीज को भी टैकल करने के लिए जो है उसी कलर से रिलेटेड जो कुछ कवर्स निकले हैं, अब देखते हैं कि ये रूमर सच होगा नहीं होगा, चांसेस तो ज्यादा है, बट अभी फिलहाल यही बात बताते हुए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: मरहबा दोहा. समथिंग बिग हैज जस्ट ओपन्ड एट दोहा सिटी सेंटर. योर फेवरेट फैशन ब्रांड R&B हैज ओपन्ड अ न्यूअर बिगर एंड ग्रेटर फैशन डेस्टिनेशन एट दोहा सिटी सेंटर. सेलिब्रेट दिस ईद इन स्टाइल विद R&B एट द न्यूली ओपन स्टोर एंड शॉप द लेटेस्ट फैशन अक्रॉस वुमेन मेन एंड किड्स. एंड हियर्स योर ओपनिंग सरप्राइज. शॉप फॉर 200 रियाल एंड गेट अ फ्री स्टाइलिश टफल बैग. यस, एब्सोल्युटली फ्री. बट हरी, दिस इज अ लिमिटेड ओपनिंग सेलिब्रेशन ऑफर. हेड टू द न्यूली ओपन R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर. कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन. या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और स्टेशन क्लॉक में 9:06 हो रहे हैं और यहां पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। देखिए, थोड़ी देर पहले बात करते वक्त हमने नापतोल के ऐड के तरीके से एक चीज बोली थी, है ना, कि अगर कमर दर्द होता है, घुटना दर्द होता है, और स्पेशली बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं कि हाँ यार ऐसा हो रहा है, कुछ लोग फनी तरीके से बना रहे हैं, बट इससे ना एक चीज बहुत मैंने नोटिस की है, वो ये है कि मोबिलिटी एक्सरसाइजेस का जो एक सर्ज जो हम देख पा रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब में या फिर फिटनेस वर्ल्ड में, कि जिम जाना ही जरूरी नहीं है, मोबिलिटी एक्सरसाइज भी करना है। अब देखिए, ध्यान से अगर आप देखोगे तो फिटनेस बहुत ज्यादा ऐसे लोग इसको कर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं कि मोबिलिटी एक्सरसाइज करने, ये करने, वो करने, वो सारी चीजें करनी है। चीजें हैं बहुत सिंपल, सिंपल सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कशिश पेन पेपर निकाल के रख लो, बहुत कम आएगा।
1: ठीक है,
0: सबसे पहले अगर एक चीज आप कर सकते हो वो सुबह उठ के गर्म पानी अगर आप पीते हो तो मैं कहता हूँ कि वो डीप स्क्वाट में बैठ के पिए। ठीक है, डीप स्क्वाट में बैठ के आप जो है गर्म पानी पिए, पानी पिए, उससे क्या होगा, आप सुबह सुबह अपने हिप फ्लेक्सर्स को, अपने घुटनों को जो है वर्क दे रहे हो हल्का सा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बहुत टाइम से तो हम बैठे नहीं डीप स्क्वाट में, तो क्या करना है, टेबल का सहारा लेके या बेड का सहारा लेके आप थोड़ा सही कर सकते हो ताकि आपके जॉइंट्स में से पहले पहले लोड हट जाए। जब मूवमेंट इजी हो जाए तो इसे कंटिन्यू करिएगा।
1: एग्जैक्टली, पहले कुछ दिन चट चट चट की आवाज आएगी हड्डियों से, लेकिन कोई बात नहीं,
0: अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके हिप फ्लेक्सर्स खुल जाएंगे, आपके घुटनों पर थोड़ा और वो हो जाएगा, एंकल थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसे साइड स्क्वाट्स भी बोलते हैं कुछ लोग और साइड सिटअप्स भी बोलते हैं कुछ लोग, जहां से मैंने सीखा वहां पे साइड सिटअप्स बोलते हैं। तो बेसिकली आपको पैर जो है आपके शोल्डर विथ के डबल या फिर थोड़ा सा और साइज में ऐसे रखने के बाद एक साइड की ओर बैठना है।
1: ओ यार, ठीक
0: है, कोई इसे कोसैक स्क्वाट भी बोलता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, आप जो भी नाम सर्च कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके हिप का एरिया थोड़ा और हो जाएगा, लेग्स की मोबिलिटी और अच्छी हो जाएगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जितना हो सकता है चलिए,
1: चलिए
0: जितना हो सकता है उतना चलिए। एक दिन में अपने वॉकिंग स्टेप्स का नंबर जो है वो बढ़ाते रहिए, 8,000 to 10,000 का जो है अगर आप काउंट मैच कर पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मोबिलिटी के इश्यूज भी ज्यादा नहीं आएंगे। क्योंकि जब आप इतना ज्यादा चलोगे तो बॉडी अपने आप जो है फैट बर्निंग मोड में हो जाती है, तो आपके बॉडी में जो अक्यूमुलेटेड फैट है वो बर्न हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, उसके हिसाब से जॉइंट पे लोड कम होगा।
1: यस, और अगर आप नियर फ्यूचर में जो है एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले मुझे लगता है ये सब चीजें करना जरूरी है। एकदम से जिम जाना, एकदम से एक्सरसाइज बहुत ज्यादा शुरू करना,
0: हैवी लोड उठाना, बॉडी उतना शायद
1: झेल नहीं पाएगी। सबसे पहले ऐसे थोड़ी एक्टिविटी शुरू कीजिए, आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी, फिर बढ़िया आप एक्सरसाइज कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और एक बहुत ही प्यारा गाना जो है आपके रेडियो सेट में हम प्ले करने वाले हैं, और उसके पहले मैं बता दूं कि एक और बहुत ही बढ़िया गाना है जो थोड़ी देर में हमने प्ले करने के लिए रखा हुआ है, बट यहाँ पे आपको हम एक मोहलत देते हैं।
1: अच्छा,
0: ठीक है, यहाँ पे हम एक मोहलत देते हैं, वो ये है कि एक ब्लैंक स्पेस मैंने अपने प्लेलिस्ट में अभी छोड़ रखा है।
1: अच्छा,
0: वो ब्लैंक स्पेस में एक गाना फिल करना है, और अभी मैं आपको मौका दे रहा हूँ, जो लोग अभी अभी सुन रहे हैं आपके पास मौका है उस ब्लैंक स्पेस को फिल करने का, एक गाना सजेस्ट करने का, आपके पसंद का गाना सजेस्ट करने का। फिलहाल यहाँ पे अभी मैं प्ले करने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया वाला गाना। तो फिलहाल यहाँ पे पंजाबी एमसी की आवाज में जोगी सुनते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि मैंने बोला आप अपने मैसेजेस से मुझे बता दीजिए कौन सा गाना प्ले करना है 3311063 पर, उसके हिसाब से हम एक लकी विनर का मैसेज सेलेक्ट करके यहाँ पे गाना प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ पे यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी बिंदास।

0: भाई ये बात ढंग से ही बोल देते नॉर्मली बोल देते समझा करो यार, इंसान समझ जाता।
1: कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जानम को, जानम समझ ही नहीं रहा।
0: अगर ऐसा जानम है इतना बोलने के बावजूद भी नहीं समझ रहा तो उस जानम को भेजो जहन्नम। ठीक है, वो जानम नहीं
1: बनना। कोई बात नहीं है, जानम की भी गलती नहीं है, हो सकता है मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो।
0: वो बात भी है, देखिए अगर मैथ्स बीच में आ गया तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते इसमें, अब हमारे हाथ से जो है मैटर निकल चुका है।
1: बीच में माँ की साड़ी आएगी, मैथ्स आएगा तो फिर क्या किया जाए,
0: क्या कर सकते, ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। अब दादी को बुलाना पड़ेगा मुझे, मैटर हो गया करके स्कूटर पकड़ के आएंगे।
1: कुछ समझ नहीं आ रहा है लिसनर्स को कि क्या बातें कर रहे हैं हम। अब देखिए हमारे सर पे चढ़ चुकी है छुट्टी।
0: मैं बता देता हूँ क्या होता है, जब रात रात तक बैठकर आप स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते रहते हो, मीम्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, तो जो होता है यानी कि ब्रेन के सर्किट में जो शॉर्ट सर्किट
1: हो जाता है
0: वही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आज हम बहुत ही खुश हैं, खुश इस बात के लिए भी हैं क्योंकि एक छुट्टियां जो है शुरू हो चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि भाई आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं ईद मजलिस। आज कोड़ीकोट स्टार रेस्टोरेंट में हम सब जाने वाले हैं, हमारे सेलेक्टेड लिसनर्स जो हैं वो आएंगे, उनके साथ हम बैठेंगे, दावत करेंगे, उसके साथ साथ गेम्स खेलेंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो छुट्टियों को एंजॉय करने का एक बहुत ही बढ़िया एक तरीका है और बहुत लोगों ने जो है रजिस्टर किया था। सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा और आपका पार्टिसिपेशन बहुत ही बढ़िया था। अब जैसे कि हर बार होता है कि हमें सेलेक्टेड लोगों को ले जाने की अनुमति होती है, तो आप दिल छोटा नहीं करिए, ठीक है। और भी ऐसे इवेंट्स आएंगे, और भी चीजें आएंगे जहां पे आप जरूर हमारे साथ।
1: हम कोशिश करते हैं कि हम हर बार अलग लिसनर्स के साथ जो है कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करें। सो बस इस बार भी हमने कुछ चुन लिए हैं और उन लोगों के पास कॉल जा चुका है, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बाकी लोगों के साथ भी हम कुछ ना कुछ प्लान करेंगे यार, आपके पास आइडिया है तो दे दो हमें,
0: टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज भी आया है मोहम्मद अब्बास भाई का, उन्होंने बोला है, हमने बोला था कि भाई हमारे प्लेलिस्ट में जो है एक ब्लैंक स्पॉट रखा है हमने, और बताइए कौन सा गाना हमें प्ले करना है, कौन सा गाना यूज करके हम जो है इस ब्लैंक स्पॉट को फिल कर सकते हैं। तो अब्बास भाई का मैसेज आया, लिखा है उन्होंने कि एपी दिल्लो का कोई भी गाना चला दो।
1: एपी दिल्लो बस ये सुनना चाहते थे मेरे मुंह से, गलत प्रोनाउंस करते हो एपी दिल्लो, सो एपी दिल्लो
0: जी हाँ, उन्हीं का ही गाना हम प्ले करेंगे। गेस कर सकते हो कशिश कौन सा गाना हो सकता है? क्या बात है, तो चलिए सुनते हैं गाना, एंजॉय करते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: माँ, मुझे छोटा एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ओलिव शॉर्ट ब्रेक।
0: हैला जादू।
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31st मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

इस गाने से थोड़ी थोड़ी वो फैशन मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर था वैसी वाली वाइब नहीं आती? नहीं आती तो कोई बात नहीं यार, मुझे आ रही थी तो मैंने बोल दिया। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो अलफर। मैं हूँ आपकी कशिश और आपकी बेसिक मॉर्निंग्स को बिंदास बनाने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी थी। अब देखिए यार, लेकिन वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, क्योंकि मुस्कान के आने का वक्त हो गया है। यानी देखिए, हंसी खुशी जोक्स मस्ती मजाक तो यहाँ पे था ही अभी तक जब तक मैं और सुदेव थे, लेकिन अब मुस्कान भी जो है वो आ जाएगी, एक बड़ी सी मुस्कान लेके आपके जो है लाइफ को मस्त बनाने के लिए। तो जितना प्यार हमें दिया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा ही ज़्यादा जो है आप मुस्कान को दे सकते हैं। एंड बाकी देखिए, बहुत सारे लोगों की जो है छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, सो छुट्टियों को जो है किस तरीके से मना रहे हैं आप, किस तरीके से जो है आपके दिन बीत रहे हैं, या किस तरीके से आगे के दिन बिताने की आपने प्लानिंग कर रखी है, ये आप हमें बता सकते हैं 3311063 पर जो है मैसेज करके। ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है। बाकी रेडियो ऑलिव का इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर भी जो है हम स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारी अमेजिंग रील्स जो है वो अपलोड कर रहे हैं, सो वहाँ जाकर जो है आप हमें चेकआउट कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं। बाकी यार देखो क्या रखा है, मतलब छुट्टियों में पहले के जो है मुझे ऐसा लगता है कि 18-19 घंटे बहुत मज़ा आएगा, लगेगा कि ओ माय गॉड क्या मजा आ रहा है, मैं तो इतना सोऊंगा, इतना रेस्ट करूंगा, ये खा लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन लेकिन लेकिन उसके बाद जो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी ना कि अब क्या करें, अब क्या करें, इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले से प्लान व्लान बना लो। बाकी मैंने आगे की आपकी प्लेलिस्ट जो है वो सेट करके रखी है, तो एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, हाई रेटेड गबरू का फीमेल वर्जन है, सो इसको एंजॉय करो। नवाब जादे मूवी का ये ट्रैक है। बाकी मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद रखना। जियो बिंदास।

0: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: This hour is brought to you by
5: Homes R Us. We complete your home.

हेलो, गुड मॉर्निंग. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. वेलकम टू लाइफ मस्त है. और ऑफिशियली हॉलीडेज जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं. आज से कतर फुल ईद मोड में चला गया है. ऑफिस चैट एकदम साइलेंट हो गई हैं, अलार्म्स ऑफ हो गए हैं और फैमिली ग्रुप सडनली बहुत एक्टिव हो गए. सो हॉलीडेज का एक्साइटमेंट साइंटिफिकली भी बहुत रियल है. रिसर्च बोलती है कि वेकेशन प्लानिंग और फेस्टिव एंटिसिपेशन भी डोपामिन रिलीज करता है. यानी हैप्पीनेस सिर्फ हॉलीडे पर नहीं बल्कि उसका वेट करने में भी मिलती है. और एवरीबॉडी वॉज वेटिंग कि भाई ईद आएगी और छुट्टियाँ भी बहुत सारी मिलेंगी. सो इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं कि ईद का फुल वाइब अगर मैं बात करूँ तो कतर में अलग लेवल का होता है. मॉल्स एकदम फुल हैं, कैफेज एकदम पैक्ड होंगे, मिडनाइट ड्राइव्स आपको दिख जाएंगी, करक चाय हर जगह हर कोई पीता हुआ दिखेगा और फिर मैचिंग आउटफिट्स. ठीक है, और कुछ लोग अभी भी बहुत कन्फ्यूज हैं कि आज रेस्ट करें या फिर शॉपिंग करने जाएं. तो टुडे इज फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई आपकी ईद ऑफिशियली किस चीज से स्टार्ट होती है? शॉपिंग से, फूड से, या बस सोने से, या स्लीप, या फिर रेस्ट से? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
2: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On air visibility supported by performance driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: This is Amira Dastoor on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: सो भाई ईद हॉलीडेज है लेकिन कतर का हेल्थ सिस्टम स्टिल फुली एक्टिव है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो ये काफी रीअश्योरिंग चीज है कि पीएचसीसी के मल्टीपल अर्जेंट केयर सेंटर्स जो है वो ईद के टाइम पर 24/7 अवेलेबल रहेंगे इंक्लूडिंग पीडियाट्रिक अर्जेंट केयर टू. और सबसे अच्छी बात है कि फेस्टिवल्स के टाइम पर हेल्थ सर्विस का यू नो प्रेशर जो है वो यूजुअली इंक्रीज होता है क्योंकि लेट नाइट आउटिंग्स, ओवर ईटिंग, डिहाइड्रेशन, किड्स इमरजेंसीज सबसे ज़्यादा होती है. और इसीलिए कतर का हेल्थ सिस्टम ईद के दौरान भी फुली ऑपरेशनल रहता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, 1600 हेल्थ केयर कॉन्टैक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट सेंटर भी 24/7 एक्टिव रहेगा. प्लस ENT, डर्मेटोलॉजी और ऑप्थमोलॉजी क्लिनिक्स भी सिलेक्टेड सेंटर्स में अवेलेबल रहने वाले हैं. और ऑनेस्टली ये प्लानिंग रिफ्लेक्ट करती है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज है. क्योंकि मतलब एक्चुअली जो लग्जरी है वो सिर्फ सेलिब्रेशन में तो नहीं है, इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और कतर का बेस्ट पार्ट यही है कि हर चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है. हर चीज़ आपको एकदम एक्टिव मिलने वाली है चाहे कुछ भी हो जाए, स्पेशली हेल्थ सिस्टम. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

So, यहाँ पर मैं बताती हूँ कि एक बार फिर से फुटबॉल का ट्रस्टेड न्यूट्रल होम बन गया है कतर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. लेबनान वर्सेस यमीन का AFC एशियन कप क्वालिफायर अब दोहा में ग्रैंड हमद स्टेडियम पर होगा. सो कतर ग्रेजुअली ग्लोबल फुटबॉल सेंटर बन चुका है, ये तो हम सबको पता है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, ये मैच ना ओरिजिनली बेरूत में होना था लेकिन अब कतर इज होस्टिंग इट एज अ न्यूट्रल वेन्यू. और ये ट्रस्ट जो है वो इजीली बिल्ड नहीं होता भाई. वर्ल्ड कप के बाद से कतर कंटिन्यूअसली इंटरनेशनल फुटबॉल इवेंट सक्सेसफुली होस्ट कर रहा है और ग्रैंड हमद स्टेडियम का फुटबॉल हिस्ट्री भी काफी स्ट्रॉन्ग है. यू ऑलरेडी नो ब्राजील नेशनल टीम भी वर्ल्ड कप 2022 में यहां पर बेस्ड थी. और इमोशनली भी ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विनर डायरेक्टली AFC एशियन कप 2027 के नेक्स्ट स्टेज के लिए कम्पीट करेंगे. अब फुटबॉल सिर्फ गेम तो रहा नहीं, नेशनल प्राइड बन चुका है. तो इसीलिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय द वे यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ईद की छुट्टियां ऑलरेडी लग चुकी हैं. आप मुझे बताइए कि आपके आज के क्या प्लान है. 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: ईद चाचा ईद मुबारक
3: आप
2: चचा मैं इब्राहिम हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को
3: अरे मियां तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं तब आप भूल गए बिरयानी भी
4: एक काम करते हैं इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं
5: ए हेलो हेलो तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां क्यों चचा
6: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ
7: एक मिनट रुको एक बात शायद आप भूल गए बेटा ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी जाती

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Selva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki toh baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझीकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में

0: आप सोचो, अगर आपको पास्ट में जाने का एक चांस मिले तो आप किससे मिलोगे। सो आज ऐसी ही किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है।
1: बुक इन फोकस विद मुस्कान।
0: सो दिस इज वन ऑफ जापानीज बेस्ट सेलर, जो कि कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक स्मॉल कैफे है जहां पर लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं एक कैफे के अंदर, लेकिन रूल बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको कॉफ़ी ठंडी होने से पहले वापस आना होगा, राइट? और ये साइंस फिक्शन बुक है, मतलब मुझे साइंस फिक्शन मूवीज़ कभी कभी देखना बहुत पसंद है, सो मैंने सोचा क्यों ना किताब पढ़ी जाए, क्योंकि किताब पढ़ते टाइम आपकी इमेजिनेशन ना और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इमोशनल थेरेपी ज़्यादा लगती है। लोग पास्ट में जाते हैं सॉरी बोलने के लिए, किसी को लास्ट टाइम मिलने के लिए, या फिर किसी अनसेड फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए।

0: का बिगेस्ट लेसन ये है कि पास्ट चेंज नहीं होता, लेकिन इमोशंस हील हो सकते हैं. सिंपल राइटिंग है, सॉफ्ट इमोशंस हैं और बहुत बहुत कंफर्टिंग स्टोरी है. परफेक्ट स्लो रीडिंग बुक है. और अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पर तो आपको अच्छी खासी लंबी छुट्टियाँ मिली हैं और एक किताब तो आपको ज़रूर स्टार्ट करनी चाहिए, देन यू कैन रीड दिस बुक. बहुत ही अच्छी किताब है. और अगर आपको साइंस फिक्शन जैसी मूवीज एंड बुक्स पढ़ना पसंद है, देन यू शुड स्टार्ट दिस बुक, जिसका PDF आपको ईजिली इंटरनेट पर मिल जाएगा. द नेम इज बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. Jio Bindas.
1: Radio Olive Bar. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Yeah, Ghana, fresh. Fresh song of the hour. Yeah,

सो टुडे इज गुजरात वर्सेस बेंगलुरु भाई क्वालिफायर वन का मैच होने वाला है आज शाम को. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. लोगों ने ऑलरेडी यू नो अपनी अपनी तरफ से सारी चीज़ें रेडी रखी हैं क्योंकि शाम को आज छुट्टियां भी हैं. किसी ने प्लान बना रखा है कि किसी अच्छे से कैफे में जाके मैच देखेंगे, तो किसी ने सोच रखा है कि नहीं यार आज तो घर पे ही बैठना है. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मुस्कान है आपके साथ. सो आज क्वालिफायर वन का मैच होने वाला है जिसमें आपको बैंगलोर वर्सेस गुजरात आमने सामने देखने वाली है. सो इस मैच को जीतने वाली टीम के चैंपियन बनने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे क्योंकि 2011 से प्लेऑफ सिस्टम आने के बाद 15 में से 12 फाइनल क्वालिफायर वन जीतने वाली टीम मैच जीती है. मतलब ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस कह सकते हो या फिर एक लक कह सकते हो. नाउ आज पता चलेगा शाम को कि क्या होगा. सो इसी के साथ कैप्टन रजत पाटीदार की कैप्टनसी में बैंगलोर ने इस सीजन में अटैकिंग बैटिंग के दम पर 8 बार 200 रन का आंकड़ा जो है वो पार किया है. और विराट कोहली टीम के टॉप स्कोरर की अगर मैं बात करूं तो वो खुद ही एक टॉप स्कोरर है और इस टाइम पर मतलब एक सेंचुरी और 4 बार 50 के सहारे उन्होंने 557 रन बनाए हैं. सो कोहली के अलावा और भी बहुत सारे यू नो बैटर्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है. पर आप मुझे बताओ कि हु इज योर फेवरेट टीम बाय द वे. किसको देखना चाहते हो आप जीतते हुए आज शाम को. 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio. Bindaas.

0: Trek. Brought to you by Danadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol. क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर स्मार्ट कैजुअल स्टाइलिश डेनिम्स स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच्ड डिटेलिंग का फिनिश
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन And stores in Old Airport Road or Paye spectacular festival offer.
0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souk Waqif Alkhol.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: सो भाई ये जो सीजन था ये ओवरऑल सबसे ज्यादा रन रेट बनाने वाला सीजन था. सो इस पूरी हिस्ट्री के इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रन रेट बना है. ओवरऑल रन रेट है 9.85. इससे पहले 2025 में रन रेट था 9.62 और 24 में था 9.56. मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2022 तक किसी भी सीजन का रन रेट 9 तक पहुंचा ही नहीं था. 2008 में जो रन रेट था इट वॉज 8.30, यानी कि 18 साल में बैटिंग की जो स्पीड है वो 1.5 रन प्रति ओवर बढ़ चुकी है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. और जब भी क्रिकेट की बात होती है तो मुझे लगता है यार कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं जो हर दिन बनते हैं, कितनी सारी नई चीज़ें हैं जो हर दिन होती हैं. सो इसी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करेंगे. और आज का मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग होने ही वाला है. क्वालिफायर 1 का मैच है बेंगलुरु वर्सेस गुजरात के बीच में. हु इज योर फेवरेट टीम बाय द वे? 3311063 इज माय नंबर. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio Bindaas. Awesome.
1: Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour. Song of the
2: hour. Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Awesome.

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Gio
1: Bindas. The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

सो जो दोहा की रातें हैं वो अब थोड़ा सा ऑफिशियली लंबी होने वाली है। इसके पीछे कोई साइंस या कोई स्टार नहीं है, इसके पीछे है कि ईद के दौरान मॉल्स जो है वो मिडनाइट तक ओपन रहेंगे, तो ऑफ कोर्स आप भी बाहर ही रहोगे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो दोहा और अगर मैं बाकी जगहों की बात करूँ तो ड्यूरिंग ईद ऑलमोस्ट नाइट सिटी बन जाता है। फैमिलीज नेट लाइट तक आउटिंग करती हैं, बच्चे जो है फुल एनर्जी मोड में रहते हैं और कैफेज तो पूरे एक बजे तक पैक होते हैं भाई। और मिडल ईस्ट कल्चर में लेट नाइट सोशलाइजिंग काफी कॉमन है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, स्पेशली गल्फ कंट्रीज में ईद का जो प्राइम टाइम है वो डिनर के बाद ही स्टार्ट होता है। आप लोग डिनर के बाद या तो घर से निकलते हो या फिर डिनर के टाइम पे निकलते हो, सो दैट आफ्टर डिनर यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड। और मॉल पार्किंग ईद के टाइम पर एकदम आपको ओलंपिक स्पोर्ट्स जैसी लगेगी कि भाई पार्किंग मिल जाए, वही बहुत बड़ी चीज है। बट फेस्टिव एनर्जी का मजा भी तभी आता है जब थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, थोड़ा सा यू नो लाइन में लगना पड़े। लाइट्स, शॉपिंग बैग्स, परफ्यूम्स, अरेबिक स्वीट्स, सब जगह आपको इनकी खुशबू आने वाली है। एवरीथिंग फील्स सिनेमैटिक। मतलब मुझे तो फेस्टिव सीजन बहुत पसंद है, स्पेशली इन कतर। ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम यू नो लाइव है, सब कुछ एकदम फ्रेश है। वैसे भी ऐसा लगता ही है बट फेस्टिव टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि टाइम अच्छा मिल जाता है, आप लेट नाइट तक घूम सकते हो, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। सो आज आपका बाय द वे क्या प्लान है? 3311063 इज माय नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

सेट सी ब्रीज और एक लाइव म्यूजिक, मतलब ईद इवनिंग सॉर्टेड लग रही है ये सब सुन के। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। भाई इतने सारे इवेंट्स हैं कतर में, इतनी सारी एक्टिविटीज, मॉल्स खुल रहे हैं लेट नाइट तक, कैफेज में भीड़ लगी हुई है। सो 27 से लेके 30th मई तक, देखो आज ऑलरेडी 26th हो चुकी है, कल से लेके 30th मई तक ओल्ड दोहा पोर्ट में लाइव परफॉर्मेंस होने वाली है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, एंट्री एकदम फ्री है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि दोहा पोर्ट धीरे धीरे कल्चरल हॉटस्पॉट बन जाता है, मतलब जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है वहां पे तो स्पेशली कुछ ना कुछ होता ही है। सो लोग वहां पे सिर्फ शिप्स देखने नहीं बल्कि एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। और ईद इवनिंग्स वहां पर बहुत ज्यादा एस्थेटिक फील होने वाली है, लाइट्स ऑन वाटर, लाइव परफॉर्मेंसेस, फूड स्टॉल होंगे, फैमिली वॉकिंग होंगी और फुल रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर। सो कभी कभी एक्सपेंसिव प्लान से ज्यादा सिंपल इवनिंग्स ना याद रह जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे लिए तो ओल्ड दोहा पोर्ट मतलब वन ऑफ माय फेवरेट स्पॉट, क्योंकि मेरे ऑफिस के बहुत पास है। सो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत ज्यादा ट्रैवल करने का मन नहीं है, कहीं दूर जाने का मन नहीं है और मौसम बहुत अच्छा होता है, तो मैं जरूर वहां पर जाती हूँ। और वैसे भी इसकी टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो शाम को 5:20 से स्टार्ट होगा और रात के 10 तक ये सारी एक्टिविटीज होने वाली है। सो यू कैन एंजॉय यू नो गुड टाइमिंग, अच्छी लाइट्स और अच्छा सी ब्रीज जिसे कहते हैं। सो यू कैन एंजॉय, प्लान कर सकते हैं आप 27 से लेके 30 मई तक। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास रेडियो।

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
2: Gio Bindas.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
3: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: मरहबा दोहा, समथिंग बिग हैज जस्ट ओपन्ड एट दोहा सिटी सेंटर. योर फेवरेट फैशन ब्रांड R&B हैज ओपन्ड अ न्यूअर बिगर एंड ग्रेटर फैशन डेस्टिनेशन एट दोहा सिटी सेंटर. सेलिब्रेट दिस ईद इन स्टाइल विद R&B एट द न्यूली ओपन स्टोर एंड शॉप द लेटेस्ट फैशन अक्रॉस वुमेन, मेन एंड किड्स. एंड हियर्स योर ओपनिंग सरप्राइज. शॉप फॉर 200 रियाल एंड गेट अ फ्री स्टाइलिश टफल बैग. यस, एब्सोल्युटली फ्री. बट हरी, दिस इज अ लिमिटेड opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it. You're listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: जब भी मैं फैशन की बात करती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा किसी एक्ट्रेस या किसी लड़की के फैशन की बात करती हूँ. आई ऑलवेज टॉक अबाउट एवरीथिंग. और आज का मेरा टॉपिक है सैफ अली खान. भाई उनका स्टाइल बिल्कुल भी लाउड नहीं है, लेकिन क्लासी ज़रूर है. ही ऑलवेज लुक्स एक्सपेंसिव विदाउट, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मनी खर्च कर रहे हैं इसीलिए, बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेटजीज. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो फैशन एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि रियल एलिगेंस मोस्टली सिंप्लिसिटी में ही होता है, और सैफ एग्जैक्टली वही फॉलो करते हैं. आपने कभी नोटिस किया होगा उनके कलर्स, उनके अगर आप स्टाइल देखोगे, उनके आप कपड़े देखोगे, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ, क्योंकि वो अपने हाइट के हिसाब से, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से सारे कपड़े पसंद करते हैं. न्यूट्रल कलर्स, फिटेड शर्ट्स, हाई वेस्टेड ट्राउजर्स और क्लीन ग्रूमिंग, ये उनका एक प्लस पॉइंट है. सो नथिंग ओवरडन, मतलब एकदम सारी चीज़ें ना ऊपर से नीचे तक जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि यार एवरीथिंग इज एकदम परफेक्ट. सो स्ट्रक्चर्ड क्लोथ्स उन पर बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं, ओल्ड मनी एस्थेटिक जिसे कहते हैं ना. सो ट्रेंड भी करंटली बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पर ये ओल्ड मनी एस्थेटिक का. कोई फ्लैशी लोगोज, एक्स्ट्रा स्टाइलिंग, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. और अगर मैं बात करूँ करीना कपूर खान की, सो शी इज़ जस्ट ऑपोजिट. उनको बहुत ज़्यादा लाउड कलर्स, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना पसंद है. बट सैफ इज टोटली सिंपल, एकदम टाइमलेस क्लासी जिसे बोलते हैं. सो आई विल से कि ग्रूमिंग का इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार चले जाएंगे तो क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूँ दिस गुड हेयर कट प्लस क्लीन फिट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लुक देता है. अगर आप भी अपने पार्टनर को बताना चाहो तो आज ही बता देना, बिकॉज अब तो लंबी छुट्टियाँ हैं. दे कैन डू ऑल दिस थिंग्स यू नो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

0: मॉडर्न कट्स तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

यू नो हर ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जिसकी तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है, जैसे ही कोई प्लान बनाओगे और ऐसा लगेगा कि नहीं यार ही इज नॉट वेल, वो तो आने ही नहीं वाला। सुन रहे आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो अगर गल्फ समर्स में कभी कभी बॉडी लिटरली हेल्प मांग रही होती है तो उसे दे देना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है कि हर कोई हर टाइम बहाना ही बना रहा हो। सो डिहाइड्रेशन हेडेक मोस्टली बहुत कॉमन हो गया है, स्पेशली हीट, लेस वाटर, कैफीन और पुअर स्लीप की वजह से। और इसके कॉम्बिनेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि कुकुम्बर में ऑलमोस्ट 95% वाटर होता है और मिंट नेचुरली कूलिंग फील देता है, इसीलिए अगर आप चाहो तो कुकुम्बर प्लस मिंट का जो ड्रिंक है वो समर में हाइड्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि हेल्पफुल होता है। सो अगली बार कोई बोले ना कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड, बहुत स्लीपी, बहुत लेजी लग रहा है, नॉट फीलिंग दैट एनर्जेटिक, तो जाइए उसके घर पे और उसको एक बढ़िया सा कुकुम्बर और मिंट वाला ड्रिंक जो है वो पिलाकर आइए। इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, हेडेक, इरिटेशन, टायर्डनेस, डिजीनेस सब कुछ कम कर देता है एकदम सडनली, क्योंकि मिंट जो है वो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। बाय द वे यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सो ईद के सेलिब्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि आज का लास्ट थॉट क्या है, क्योंकि मेरे तो हो गया है जाने का टाइम. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो ईद ना सिर्फ नए कपड़े या नए खाने के लिए नहीं होती, इट्स फीलिंग फैमिली का वेट, लेट नाइट लाफ्टर, फॉरगिवनेस, वार्म हग्स, शेयर्ड मील्स, ये सब कुछ ईद के ही यू नो पार्ट्स हैं. सो एडल्टहुड में फेस्टिवल्स और ज़्यादा मीनिंगफुल लगने लगते हैं, क्योंकि बिजी लाइफ में यही मोमेंट जो है वो स्लो कर देते हैं. तो इस ईद फोटो ज़रूर लीजिए, लेकिन मोमेंट्स भी फील कीजिए और थोड़ा एक्स्ट्रा काइंडनेस भी कैरी कीजिए, क्योंकि वही है जो सबको हमेशा याद रहने वाला है. सो बेस्ट ईद आउटफिट हैप्पीनेस ज़रूर देता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे कि लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ टाइम बिताना. और अगर आपने प्लान किया है कि आप अपनी फैमिली को इस ईद पर यहाँ पर लेकर आए हैं, तो उन्हें स्पेशली खूब अच्छे से यू नो टाइम दीजिए, खूब अच्छे से उन्हें कदर एक्सप्लोर करवाइए. और सुनते रहिए रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour.

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive,
1: Geo Windows. Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: मरहबा दोहा. समथिंग बिग हैज जस्ट ओपन्ड एट दोहा सिटी सेंटर. योर फेवरेट फैशन ब्रांड R&B हैज ओपन्ड अ न्यूअर बिगर एंड ग्रेटर फैशन डेस्टिनेशन एट दोहा सिटी सेंटर. सेलिब्रेट दिस ईद इन स्टाइल विद R&B एट द न्यूली ओपन स्टोर एंड शॉप द लेटेस्ट फैशन अक्रॉस वुमेन, मेन एंड किड्स. एंड हियर्स योर ओपनिंग surprise. Shop for 200 real and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: This is Deepika Padukone.
4: Deepika Padukone.
3: Radio Olive 106.3.
5: I'm a number one. Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
7: Olive Music Marathon. Ek ghanta. Non-stop back-to-back gaane.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm a number one. Radio Olive,
1: I'm a number one. क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewellery purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
3: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
4: Eid Mubarak.
5: Taufik chacha, Eid Mubarak.
6: Aap?
5: Chacha, main Ibrahim.
6: हर जुमेरात आता हूँ
5: तुम्हारी बिरयानी खाने को.
7: अरे मियाँ, तौफिक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
8: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
9: ए, हलो हलो, तौफिक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ.
10: क्यों चाचा?
11: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
12: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी जाती.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इरेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki toh baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट, अब बिन उमरान में।
7: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: Tanisha.
1: The Yellow Diary se tere jaha aur this is the beautiful track only on Radio 11.6.3 FM. Tanisha aage aapke saath Oliver George lekar a very good afternoon meri jaan. 26th of May Tuesday ka din chuttiyan shuru ho chuki hai. Khush to bahut hoge tum. Hai kya chal raha hai? How has the day been so far? And kya Eid ki sari preparations and all ho gayi hai? Matlab ab to bilkul aa hi gayi hai Eid. So kya hai? कैसे चल रहा है सब कुछ सब जानना चाहती हूँ 3311 1063 पर विस्तार में मैसेज करके बताइए बनता भी है यार
2: हल्का हल्का सा ये नशा
1: जी
3: सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी मैंने तुझको
1: बहुत ही सुंदर लिखा है यार

जोश मूवी से ये खूबसूरत गाना भी लाइन अप है और साथ में बहुत सारे और भी सरप्राइजेज हैं यार बीच में, बहुत सारी बातें गिर रही हैं आपसे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आपके हालचाल। 3311 1063 पर मैसेज कीजिए और सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM जियो बिंदास मेरी जान।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. गजब का है दिन, जुबीन नौटियाल की आवाज में सुना आपने ये गाना. ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और तनीषा के साथ हैं आप. और मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक करती हूँ, ये तो आप सबको बता ही रखा है. हम इस पे बहुत ज्यादा ड्रिल भी करते हैं कि भाई आप भी ओवरथिंक करो, मैं भी ओवरथिंक करूँ, बननी तो बनती है. हाँ जी, लेकिन आई यूज टू केयर अ लॉट कि यू नो इफ आई डिड समथिंग तो लोग क्या कहेंगे. एंड उस चीज़ ने मेरी ग्रोथ को बहुत हैम्पर कर रखा था पर्सनली. ओके, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी कि ओ इफ़ आई वेयर सर्टन टाइप ऑफ क्लोथ्स व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ मी, इफ़ आई डू दैट काइंड ऑफ मेकअप व्हाट विल दे से, अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो वो क्या बोलेंगे. बट देन इवेंचुअली आई रियलाइज कि वो तो मैं सही भी करूँगी तभी भी बोलेंगे ही ना यार, तो क्यों मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही हूँ ये सोचने में कि चार लोग क्या कहेंगे. क्योंकि Do whatever you want. They have their mouths. They are going to use it. They will say some or the other thing. तो मेरी जान, inner peace के झरने बहेंगे if you stop caring about चार लोग क्या कहेंगे. ये जो एक मोटो मैंने बना लिया है जिंदगी में, बहुत सरल, आसान और बढ़िया मजेदार हो चुकी है. तो I would say अगर आपने अभी तक ये चीज नहीं follow करनी शुरू करी है तो कर लो, it's high time now. ठीक है, और अभी सुनो cool song of the hour. Stay tuned, Jio Bindas.
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

0: तनीशा।
1: सोनिकम की आवाज में हल्का हल्का सा ये नशा चॉकलेट मूवी से तनीशा के साथ सुना आपने रेडियो 106.3 FM पर। ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और देखो हमारी छुट्टियां तो लग चुकी हैं, ठीक है, बट हेल्थ केयर सर्विसेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अनाउंस किया है कि वो आपके लिए तत्पर है, एकदम रेडी है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, यू कैन विजिट एंड द टाइमिंग्स हैव बीन गिवन फॉर ऑल दी हेल्थ केयर सर्विसेज की क्या उनका टाइमिंग रहेगा, कब से कब तक ओपन है। सो कोई भी प्रॉब्लम हो वी आर रेडी फॉर यू, ठीक है, बस कोशिश ये करो कि अपना ख्याल रखो, प्रॉब्लम तक बात पहुँचनी ही नहीं चाहिए, है ना। और अब इम्पोर्टेंट हो यार, आप अपना ख्याल रखा करो हमारे लिए, अपने अपनों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, उनके लिए ख्याल रखना तो बनता है, राइट। सो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है, भयंकर क्रेजी वाली, और अभी तो और आने वाली है जी, तो रेडी रहिए उसके लिए। यू नो, ईट गुड फूड, ज़्यादा ऑयली ना खाएं और ऐसे फ्रूट्स लें जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, और पानी तो हमेशा अपने साथ रखिए, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑल अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, कैरी दैट विद यू, स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है मेरी जान, और सनस्क्रीन, यस मस्ट है भाई साहब वो तो, और मस्ट आने वाला गाना भी है क्योंकि जावेद अली साहब की आवाज़ में सुकून है ये गाना, सौदेबाजी फ्रॉम द मूवी आक्रोश। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: विद रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
7: Olive Recharge.
8: In association with
9: Homes Are Us, we complete your home. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
5: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: मैं हूँ सारिका
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर and कुछ दिन से आप सुन रहे थे ना कि we are talking about Eid Majlis Season 5. जी हाँ आज ही यस सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद हम अपने लिसनर्स के साथ कुछ फैमिली सेलेक्ट की हैं जो कि हमारे साथ आज लंच कर रही हैं एंड उसकी सारी झलकियां आपको देखने को मिलेगी हमारे सोशल मीडिया पर सो इफ यू हैवंट फॉलोड अस येट फटाफट से जाओ radioolive.qa इज द हैंडल फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉलो कर लो फटाफट और यूट्यूब भी है रेडियो ऑलिव का जाकर चेकआउट करो वहाँ पे यू नो बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरव्यूज भी की पोस्टिंग सो वो भी देखिए और मैसेजेस तो देखो करते ही रहिए उसमें कमी नहीं होनी चाहिए ठीक है 3311 1063 स्टे ट्यून एंड रियो विंदास
0: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
1: ईद मुबारक
2: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM
0: मरहबा दोहा समथिंग बिग हैज जस्ट ओपन्ड एट दोहा सिटी सेंटर योर फेवरेट फैशन ब्रांड R&B हैज ओपन्ड अ न्यूअर बिगर एंड ग्रेटर फैशन डेस्टिनेशन एट दोहा सिटी सेंटर सेलिब्रेट दिस ईद इन स्टाइल विद R&B एट द न्यूली ओपन स्टोर एंड शॉप द लेटेस्ट फैशन अक्रॉस वुमेन मेन एंड किड्स एंड हियर्स योर ओपनिंग सरप्राइज शॉप फॉर 200 रियाल एंड गेट अ फ्री स्टाइलिश डफल बैग यस एब्सोल्युटली फ्री बट हरी दिस इज अ लिमिटेड ओपनिंग सेलिब्रेशन ऑफर हेड टू द न्यूली Opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
3: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम शाइन स्मार्टर दिस सीजन विद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइन सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.
4: Hazir hai, husn, ishq ki mehfil mein, aaj phir, hazir.

0: तनिषा
1: सुनिधि चौहान की आवाज में मोहब्बत फ्रॉम द मूवी फनी खाओली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा के साथ यहाँ बॉलीवुड रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। वैसे तो देखो कतर में बिल्कुल भी कमी नहीं है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की। यू नो यू जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स फैमिली। देर आर अ लॉट ऑफ स्पेसेस, बहुत सारी ग्रीन स्पेसेस है, बहुत सारे पार्क्स है एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर टू डू और उसमें एडिशन होता ही जा रहा है। जी हाँ, सो पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपालिटी ने एक और पार्क जो है वो इनॉग्रेट किया है, फरजान अल नोफल पार्क इन अल थुमामा। एंड ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स या सर्विस फैसिलिटी के लिए एक और एरिया आपके लिए ऐड हो चुका है। सो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा इसको एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वन। अगर आपके आसपास है, आप वहीं रहते हैं और आपने ऑलरेडी देख लिया तो ज़रा मुझे बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, मैसेज कीजिएगा और सुनते रहिए रेडियो ऑल जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
1: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
2: Eid Mubarak.
3: Taufik chacha, Eid Mubarak.
4: Aap?
3: Chacha. मैं इब्राहिम
5: हर जुम्मे रात आता
3: तुम्हारी बिरयानी खाने को।
4: अरे मियाँ तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं तब आप भूल गए बिरयानी भी।
6: एक काम करते हैं इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
7: ए, हलो हलो तौफीक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ। क्यों चाचा?
8: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
9: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांट।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki toh baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट, अब बिन उमरान में।
7: लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज।
8: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
7: ऑलिव रिचार्ज।
9: इन एसोसिएशन विद
10: होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
11: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हो जाएगा यार, जल्दी ही है। हाँ, तनीषा के साथ आप रेडियो 106.3 FM पर ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर।
1: ये है चलती फिरती डिक्शनरी।
0: जी, सो आज जो मैं डिक्शनरी से वर्ड लेकर आई हूँ, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी एंड माइंड ब्लोइंग एट द सेम टाइम। सो जब हमें बहुत जोर से भूख लगती है या फिर कई बार जब हम एंग्शियस हो जाते हैं तो यू नो स्टमक में से आवाज़ आती है गुड़ गुड़ की। या सो उस आवाज़ के लिए दैट रंबलिंग, दैट गर्गलिंग साउंड ऑल्सो हैज़ अ नेम। एंड जब मुझे ये पता चला, मुझे इतनी हंसी आई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यू नो लाइक स्पेशली व्हेन यू आर फास्टिंग, और आप फास्ट कर रहे हैं, आप ऑफिस आ गए हैं, बट देखो पेट को तो नहीं पता है कि आप फास्ट कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं, पेट में से आवाज़ आने लगती है जब भूख लगती है। और अगर आप किसी शांत जगह पे बैठे हैं तो वो आवाज़ इतनी लाउड लगती है। मेरे साथ ये एम्बैरेसिंग मोमेंट काफ़ी बार हो चुका है। सो दैट साउंड विच कम्स यू नो फ्रॉम योर स्टमक, इट इज़ कॉल्ड बॉर्बोरिग्मस, BORBORYGMUS, Borborygmus. Yes, so we have a name for that sound as well. Next time, whenever it happens, at least मैं उसको cover up करने के लिए ये बोल सकती, it's just Borborygmus, guys. It's okay, nothing to focus on. Sending true one there, Benny Dayal or Aditi Singh ki awaaz mein. Stay tuned on Jubandas.

0: तनिषा
1: कार्तिक कॉलिंग कार्तिक से हे या ब्यूटीफुल ट्रैक इसका मुझे उफ तेरी अदा भी बहुत पसंद है तनिषा के साथ आप रेडियो 106.3 एफएम पर ऑल एवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर और भाई यही बाकी रह गया था सो देर आर ऑल दीज यू नो ऑनलाइन वेबसाइट्स जो कि हमें कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं यू नो यू कैन बाय द कोर्सेज आइदर यू कैन जॉइन द क्लासेज लाइव या फिर आपको सारे लेक्चर्स डाउनलोड करने को मिल जाते हैं उसमें एक नया कोर्स ऐड हुआ है I never thought कि इसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी and the course is about office politics. Yeah, they are teaching you office politics. हम यहाँ eradicate करने की कोशिश कर रहे हैं ये हमें और उसमें पढ़ाने लगे हैं और नॉलेज बढ़ा रहे हैं If they are trying to tell कि उससे deal कैसे करना है positively, then तो okay. But अगर वो सिखा रहे हैं कि कैसे करनी है office politics, तो something is very much wrong with this world. Tell me, would you want to join such course? 3311-1063 पर मैसेज कीजिए और बताइए और सुनते रहिए रेडियो ऑल इट यू बिंदास

0: आ रही है और घर की याद भी आ रही है। एक और ईद बीत जाएगी अपनों से गले लगे बिना। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, सपनों की तैयारी जारी है। रेडियो ऑलिव की तरफ से उन्हें भी ईद मुबारक हो जो घर से दूर हैं और वीडियो कॉल पर बात करने के लिए मजबूर है।
1: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-561-23.

0: तनिषा
1: You're listening to Radio All 106.3 FM. तनिषा आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और इस वक्त स्टूडियो में सुदेव भी है मेरे साथ.
2: जी हाँ.
1: So as soon as you start thinking कि इससे absurd चीजें तो दुनिया में नहीं हो सकती है,
2: फिर आप तनिषा से मिलते हो.
1: Something more absurd happens.
2: वही मैंने बोला.
1: No.
2: फिर आप तनिषा से मिलते हो.
1: Listen to me.
2: अच्छा ठीक है.
1: So a woman ended her marriage.
2: Okay.
1: Why?
2: क्यों?
1: Because उसके हस्बैंड ने उसकी पानी पूरी खा ली.
2: यार ऐसे तो फिर मेरी तो शादी होगी. मैं क्या करूंगा?
1: प्रायोरिटीज देख रहे हो आप.
2: तो ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसे पानी पूरी को या फिर उसके साथ ज्यादा लगाव ना हो या फिर खाने से लगाव ना हो, ताकि मैं उसके प्लेट से भी ले लूं तो कोई दिक्कत ना हो.
1: पर क्यों लेना है, आप अपनी प्लेट लो ना.
2: इस प्यार को क्या नाम दूं मैं?
1: पानी पूरी से जो प्यार है उसको क्या नाम दे?
2: प्लेट प्लेट पे लिखा है खाने वाले का नाम.
1: But this is so weird. All these things which we are hearing right now. कोई कहता है कि मेरी वाइफ सुबह उठ के मेकअप नहीं लगाती है इसलिए मैं डिवोर्स कर रहा हूँ उसको.
2: मैं सच बताता हूँ क्या है इसका रीजन. क्या है? देखो ये साइकोलॉजी है दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात.
1: जी
2: आप पुरुष
1: प्रोफेसर सुदेव इज हियर.
2: जी हाँ सर्दी इंस्टीट्यूट से हम आ चुके हैं. तो इससे हमें ये पता चलता है कि साइकोलॉजिकली ठीक है, पुरुष हो या महिला हो, ये अपने पार्टनर से अगर तंग आ चुके हैं
1: तो वो
2: जब इनका हो चुका होता है कि अब तू पलक झपका के दिखाता हूँ मैं करके, ठीक है, वैसा हाल होता है. अब भाई पानी पूरी खाने में अगर हम ब्रेकअप या फिर डिवोर्स करने में आ गए तो मुझे लगता है दिल्ली की आधी जनता शादी नहीं करेगी फिर. ठीक है तो ये
1: That
2: तो
1: also makes sense.
2: हाँ वही मैं कह रहा हूँ. और इस रिसर्च तक पहुँचने के लिए बहुत सालों का प्रयत्न जो है मैंने किया है. बहुत
1: समझ
2: सारे लोगों
1: पा रहे
2: से
1: हैं
2: मैं बातचीत करके आया हूँ.
1: जी जी जी.
2: तो ये बिल्कुल सच बात है, बट हर सच को आप एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लीजिएगा, इसको एक प्लेट पानी पूरी के साथ लीजिएगा.
1: थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ज्ञान सर.
2: थैंक यू सो मच.
1: एंड लेट्स प्ले अ सॉन्ग दादी की शादी मूवी से.
2: क्या बात है. इससे बढ़िया और क्या हो सकता है.
1: आयरोनिक. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास
2: मेरी जान.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और यार ये अजीब अजीब सी कौन कर रहा है ये सारी रिसर्चें. सो देर इज दिस न्यू स्टडी विच सेज क्राइंग 2 to 4 टाइम्स अ वीक इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ. क्या तो मतलब मेरी तो बढ़िया होनी चाहिए क्योंकि एनी माइनर इनकन्वीनियंस, वेरी माइनर ऑल्सो, मैं उसके बारे में बहुत सारा सोच लूंगी और बस फिर गुस्सा आ जाएगा और फिर रोना निकल जाएगा. क्या आप भी गुस्से में रो देते हैं वैसे, ये जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि गुस्से को टैकल करने का सबका अपना अपना तरीका होता है. मेरा तरीका है मैं रो देती हूँ. सो जैसे ही रो के वो आंसू के बहाने सारा गुस्सा निकल जाता है एंड देन किसी को कोई हार्म नहीं होता उससे अपार्ट फ्रॉम मी बिकॉज आई हैव क्राइड. बट या इट एक्चुअली फील्स बेटर आफ्टर क्राइंग, यू नो, टू लेट योर इमोशंस आउट इन एनी वे विच इज नॉट हार्मिंग एनीबॉडी इज गुड फॉर यू. सो उसको जितना ज्यादा सप्रेस करके रखोगे इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. तो मत करो मेरी जान एंड मुझे बताओ कि आप कैसे टैकल करते हो अपने गुस्से को. 3311 1063 पर स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बिंदास.
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Geo
1: Windows. Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand, R&B, has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
2: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
4: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर.
5: इब्राहिम भाई, ईद मुबारक.
6: ईद मुबारक.
5: तौफीक चाचा, ईद मुबारक.
6: आप
5: चाचा? मैं इब्राहिम.
6: हर जुम्मे रात आता हूँ
5: तुम्हारी बिरयानी खाने को.
7: अरे मियाँ, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
8: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
9: हेलो हेलो, तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ.
7: क्यों चचा?
10: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
11: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इरेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलिशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Selva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में
7: लगा और हो जा रिचार्ज ऑलिव रिचार्ज
8: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
7: ऑलिव रिचार्ज
9: इन एसोसिएशन विद
10: होम्स आर अस We complete your home. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
11: Commercial Bank. We are saving more. Turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

तनिषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 FM पर और रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। और भाई सोशल मीडिया पर बहुत सारे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पोस्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो भी पोस्ट की जाएगी जो हमने लंच किया है अपने लिसनर्स के साथ, ऑलिव सुनो फैमिली ने और हमारे लिसनर्स विद देयर फैमिलीज। इट वॉज सो मच फन। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिससे आपने सिर्फ यू नो व्हाट्सएप पे बात करी है या फिर कभी फोन पे बात हुई है। इट फील्स वेरी होमली व्हेन वी मीट यू गाइस। एब्सोल्युटली अमेजिंग है यार, आप कितने अच्छे हो यार। सो उसकी झलकियां भी आपको देखने को मिलेगी हमारे सोशल मीडिया पर। radioolive.qa इज द हैंडल, चेक आउट कीजिए, फॉलो कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो कर रखा है तो डू नॉट टच दैट फॉलो बटन, ठीक है जी। जस्ट लाइक शेयर कॉमेंट ऑन द वीडियोज एंड पोस्ट, पार्टिसिपेट करो जिसमें कॉन्टेस्ट चल रहा है। यू नेवर नो, यू माइट विन समथिंग एक्साइटिंग। हाँ, और सुनते रहो रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: 106.3 FM, ये है Radio Olive.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
4: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million reals cash prizes.
5: Jeetne ke 4 raaste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 reals growth par paiye ek coupon.
4: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
5: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 mahine regular salary par paiye ek extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
6: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान.
7: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल.
6: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस. तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में. योर अल्टीमेट ईद डेस्टिनेशन.
8: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज. ऑलिव रिचार्ज.
9: ऑलिव रिचार्ज. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर. जियो बिंदास.
8: ऑलिव रिचार्ज.
10: इन एसोसिएशन विद
11: होम्स आर अस. We complete your home. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
12: Commercial Bank. We are saving more. Turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million reals dream. Dream bigger.

0: तनिषा
1: तनिषा के साथ हैं आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम पर. ऑल ऑफ रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और फिलहाल वक्त हो गया मेरे जाने का. मेरी जान लौट कर आऊंगी कल दोपहर 2 बजे. यस, ईद मजलिस हम यहाँ ऑन एयर भी सेलिब्रेट करने वाले हैं. ऑब्वियसली ऐसे कैसे हो सकता है. ढेर सारी बातें करेंगे आपसे, जानूंगी आपकी पिक्चर्स देखनी होगी ना मुझे, क्या पहना है आपने ईद पे, सब कुछ कल होगा. बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे अमेजिंग गाने. तो देखो यूजुअल है यहाँ पे. आपने एक काम करना है, आपने अपना सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, और बढ़िया पेट भर के खाइए और साथ में हमें याद करते रहिए. और जब भी याद करें मैसेज कर दो, या फिर इंस्टाग्राम पे कर दो या व्हाट्सएप पे कर दो. 3311106 इज द नंबर व्हाट्सएप के लिए. कुछ भी बात करनी हो बिंदास आ सकते हैं. और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सिंध रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंद।

0: सिमरन कौर तोड़े नाल 5:07 स्टूडियो की घड़ी पे
1: चार घंटे अपने होने वाले हैं,
0: क्योंकि ईद की छुट्टियां शुरू हो गई है।

दिन से मुझे बार बार थर्सडे थर्सडे थर्सडे वाली फील आ रही है। आपको भी तो वीकेंड वाली फील ही आ रही होगी। आज तो आराम से उठे होगे बिना अलार्म के। चक्को फिर मिलेगी छुट्टी के बारे में थी। अभी फिलहाल 4 घंटे हमने ये पूरा टेंशन मुझे देने के लिए तैयार हो जाओ। और क्या कर रहे हो आप, कैसा रहा आपका आज का दिन, कैसी रही आपकी आज की पहली छुट्टी ईद वाली। 3311063 पर आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस भेज दो एंड मुस्कुराओ। आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हो। Say, whoa!

0: हाँ जी, आप भी कहते हो कि नहीं प्यार। लेकिन आप लोगों के प्यार का क्या, बड़ा ही जबरदस्त है यार। मैं कह रही सुनियो की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। आपको पता है कि ईद मजलिस के लिए हम हमारे लकी लिसनर्स के साथ आज लंच करने वाले थे। फाइनली आज हमने हमारे लकी लिसनर्स के साथ लंच किया, गेम्स खेली, उनको गिफ्ट्स दी और बड़ा अच्छा 3-4 घंटे का हमने ये जो टाइम था ना हमारे लकी लिसनर्स के साथ स्पेंड किया। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों से जब भी मिलना होता है ना बहुत बढ़िया लगता है यार, बहुत मजा आता है। और हमेशा यही रहता है कि यार और भी लिसनर्स से हमको मिलने का मौका जो है वो मिले। सो कोई भी त्यौहार हो, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, हम कोशिश करते हैं कि अगर आप यहाँ पर हैं और अकेले हैं तो हमारे साथ जो है वो आपका सेलिब्रेशन जरूर बढ़िया रहे। बट यस, दिल से आप लोगों का थैंक यू जिन लोगों ने आज ये ईद मजलिस के इवेंट को अटेंड किया और हमारे साथ लंच किया, फन किया, गेम्स खेली एंड गिफ्ट्स देते हुए जो आपके चेहरे पे हम लोग स्माइल देखते हैं ना, वो अलग ही लेवल की होती है यार।
1: हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते।
0: तो जो लिसनर्स आज आए थे ईद मजलिस के लिए, अगर उनमें से कोई सुन रहे हैं तो बताइएगा कि आज का ये इवेंट आपको

0: तेरी ये रेडियो ऑलिव करके तेरी ये जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: 106.3 FM, ये है Radio Olive.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच्ड डिटेलिंग का फिनिश.
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर.
4: ब्रांड बॉय, ईद मुबारक.
5: ईद मुबारक.
6: तौफीक चाचा, ईद मुबारक.
7: आप
6: चाचा? मैं इब्राहिम. हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को.
7: अरे मियां, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
8: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
9: ए, हलो हलो, तौफीक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां. क्यों चाचा?
10: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
11: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा. ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी जाए.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Paratma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Paratma Wholesale Market at Selva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki toh baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में
7: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 एफएम एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 एफएम ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स सिंपल इफेक्टिव इंटीग्रेटेड कॉल 3009-1063 और 3082-1063
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
9: आरजे सिमरन के साथ
10: Zabardast evening. Make you drive golden with.
11: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
12: Supported by Homes Are Us. We come.

0: दुल्हन
1: हम ले जाएंगे।
0: मैं तो शादियों में खाना खाने के लिए जाती हूँ यार, और फोटो खींचने के लिए। मतलब अच्छे कपड़े पहन के फोटो खींच के और खाना खाने का अलग ही लेवल पे जो

0: है वो बना हुआ है, लेकिन माहौल तो मैच का भी बना हुआ है। बेंगलुरु और गुजरात का मैच जो है वो हो रहा है, क्वालिफायर मैच है पहला, एंड धर्मशाला में ये मैच हो रहा है। अभी बेंगलुरु खेल रही है, 6 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 76, पहला विकेट जा चुका है। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो बताइएगा जरूर, मैच की अपडेट्स की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दीजिए। 3311063 पर क्या कर रहे हो आप, क्या प्लान है आपकी ईद की छुट्टियों का बताइएगा मुझे।
1: Presented by Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi, ab bilkul paas. Madar Kadeem, Bakra, VFS Global K site, Oak Banafi, Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
1: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

0: ईद बनाए हर पल यादगार
1: विद रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
0: स्टे ट्यून्ड
1: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
3: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million riyals cash prizes.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 riyals growth पर पाइए एक coupon.
3: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
2: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन और चौथा 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
4: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. Qatar ki number 1 RJ.
6: RJ Simran ke saath.
7: Zabardast evening. Make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Supported by Homes Are Us. We complete your home.

0: है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: ਸੋਹਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
1: ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ
0: सिमरन कौर आपके साथ है जबरदस्त इवनिंग्स में। और बाहर के मौसम की क्या हाल है?
2: मौसम आपके सुनो, मौसम आपके सुनो।
0: देखो यार वेदर का हाल है कि 37 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट टेम्परेचर आज का जो है वो है 42 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम जो है 30 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी ऑफ कोर्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है 21% एंड विंड जो है 12 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। आप कौन सी रफ्तार से चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या प्लान है ईद के? 3311063 पर एंड थैंक यू सो मच रिफत लिखती है। हाय सिमरन दीदी बेस्ट शो, थैंक यू यार।

0: Happiness and joy. Enjoy. On Radio Olive 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान।
3: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल।
2: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस। तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में। योर अल्टीमेट ईद डेस्टिनेशन।

जी मैं कहीं सोने को कहता था कि हलचल सच रिया गाल सिमरन कौरियाओ के साथ। मुझे बताओ आज का मैच आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतने वाला है? बेंगलुरु और गुजरात का मैच जो है वो चल रहा है, फर्स्ट क्वालिफायर मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अपनी अपनी टीम के बारे में आपको पता होगा, अपनी अपनी टीम के लिए आप जो है वो भेजो यार कि आपकी टीम जीतने वाली है। सो अभी बेंगलुरु जो है खेल रहा है, 12.5 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 127 और 3 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं।

0: यार ये तो ईद वाली वाइब होगी यार।
1: ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल।
0: देखो यार ईद की वाइब सेट है, गानों की वाइब भी हमने सेट करके रखी हुई है, शो भी चल रहा है, एंटरटेनमेंट फुल ऑन है आपका, और एंटरटेनमेंट में कमी तो है बिल्कुल नहीं आएगी, चाहे मेरा शो खत्म हो जाए उसके बाद आपके लिए जो है वो मजेदार माहौल बनेगा क्लब ऑलिव का, ताकि जब आप लॉन्ग ड्राइव में निकलें बाहर फन करें तो म्यूजिक की कमी जो है ना वो हमारी तरफ से होनी नहीं चाहिए। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।
2: Presented by
3: Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most love kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Global K site. Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports. Brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real siksa. Desi Dhaba. Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

0: का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
1: ईद मुबारक
2: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM
3: योर डेली सरप्राइज इज हियर अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज क्लेम करो ओरिडू ऐप पर ऑफर वैलिड है 31st May तक एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू
4: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर Visit Malabar Golden Diamonds today.
5: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Alkhol.
6: Ibrahim Bhai, Eid Mubarak.
7: Eid Mubarak.
8: Taufik Chacha, Eid Mubarak.
9: आप
8: चचा मैं इब्राहिम
9: हर जुम्मे रात आता
8: तुम्हारी बिरयानी खाने को
7: अरे मियां तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं तब आप भूल गए बिरयानी भी
10: एक काम करते हैं इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं
7: ए हेलो हेलो तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां क्यों चचा
11: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ
12: एक मिनट रुको एक बात शायद आप भूल गए बेटा ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Selva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में।
7: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
9: आरजे सिमरन के साथ।
10: This hour is brought to you by
11: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: with Radio Olive 106.3 FM.
1: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
5: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
7: आरजे सिमरन के साथ.
8: This hour is brought to you by
4: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

लो जी बुला रहे सियागी सोनी। हाँ जी बस मैं सुनियो कि दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तुहाडे नाल।

गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं एंड कल से जो है वो कल 3 दिन के लिए माहौल जो है वो बनने वाला है ईद मजलिस वाला। जी हाँ, कल परसों एंड नरसों, जी हाँ, वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे जो है वो ईद मजलिस लगने वाली है। अब जो जबरदस्त इवनिंग्स या बिंदास मॉर्निंग्स या ऑलिव रिचार्ज या फिर लाइफ मस्त है, नहीं नहीं, ये शोज के नाम नहीं रहेंगे। पूरे 3 दिन के लिए ईद मजलिस जो है वो होने वाली है ताकि आप लोगों को ईद की वाइब मिले, अच्छे से अच्छा म्यूजिक और मिले और आप लोगों को साथ मिले हमारा। तो हम तो आप लोगों की वजह से छुट्टी नहीं करने वाले हैं, हम लोग तब छुट्टी चले करेंगे जब ईद चली जाएगी और आप लोगों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है? फिर एक एक करके छुट्टियां ले लेंगे हम थोड़ी सी, लेकिन यस, ईद मजलिस के लिए तैयार हो जाइए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच आज जिन्होंने हमें ईद मजलिस के लंच के लिए ज्वाइन किया, जो हमारे लकी लिसनर्स थे उनसे मिले हम, बड़ा अच्छा लगा, फन किया हम लोगों ने, गेम्स खेली एंड बहुत सारी गिफ्ट जो है हमारे लिसनर्स को जब हमने दी, उनके चेहरे पर जो स्माइल थी, बड़ा मजा आया यार। तो जो कोई भी हमारा कॉन्टेस्ट होता है ऑनलाइन, तो आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट जो है वो कर लिया करें ताकि मिलने का कोई मौका चूक ना जाए दोस्तों।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: This Eve, your shopping just got twice as exciting at Lulu Hypermarket because Half Pay Back is back.
4: Pick your festive fashion favorites, sari, churidar, footwear, ladies bag, baby accessories and more. And when you spend 200 riyal, you get a free Lulu shopping voucher worth 100 riyal instantly.
3: That's right. Shop today, save instantly and come back for more celebrations. Lulu Hypermarket, more style, more smiles, more savings this Eve.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: This hour is brought to you by
8: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: On the number one radio alert.
10: Olive Sunil Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: नमस्कार वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ।
1: जैकी श्रॉफ
2: रेडियो 106.3
0: जियो बिंदास। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: इश्क में
1: क्या गाने है यार। आप लोगों के लिए चल रहे हैं, लेकिन मेरी लिस्ट में आज क्या है?
2: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
1: ये बात यार है। मैं आपको बता तो दूंगी, लेकिन प्लीज आप मेरे को जज मत करना कि सिमरन यार तुम्हारी फीड कैसी है यार। सो इंस्टाग्राम की फीड पे आजकल जो मैं रील्स देख रही हूँ, जो वायरल रील्स चल रही हैं, जो कि मैं, तनीषा और कशिश सुदेव हम एक दूसरे को भेजते रहते हैं, मेरी और भी फ्रेंड्स हैं जिनको मैं ये भेजती रहती हूँ, तो मेरी फीड पे आ रही है वायरल में आलू गोभी की रील्स। तो आलू की शादी गोभी से हो जाती है, उसके बाद आलू गरीब होता है, फिर वो विदेश जाता है, फिर वो अमीर हो जाता है, वो पैसे कमाता है, कभी ये वाली होती है, फिर स्ट्रॉबेरी का रिश्ता जो है वो आता है कभी। माय गॉड, मेरी फीड, मैं सोच रही हूँ लोग इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से लेके आ रहे हैं। ब्राउनी जो है वो आइसक्रीम के साथ उसकी शादी हो जाती है, वो गुलाब जामुन को धोखा दे देती है, भाई साहब अलग लेवल की रीलें चल रही हैं। प्लीज जज मी इफ यू वॉन्ट टू, बट येस ये है मेरी फीड जो वर्ल्ड वायरल में आजकल चल रहा है। सिमरन कौर आपके साथ, चियो बिंदास। आपकी फीड पे आजकल क्या है? इंस्टाग्राम पे कौन सी रील है जो आपको बैक टू बैक आ रही है? 3311063 पे बताओ यार।
2: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

0: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
2: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
0: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.

0: बढ़िया गाना। श्रेया घोषाल ने गा दिया यार। बेंगलुरु और गुजरात के बीच आज का मैच चल रहा है। बेंगलुरु ने पहले खेलते हुए 255 रन्स का टारगेट दिया है, भारी अच्छा खासा जो है वो टारगेट दे दिया। धर्मशाला में ये मैच जो है फर्स्ट क्वालिफाई मैच जो है वो हो रहा है बेंगलुरु और गुजरात के बीच में, और जैसे ही अब गुजरात की पारी जो है वो स्टार्ट होगी मैं आपको सारी की सारी अपडेट्स देने वाली हूँ।
1: तेरी चाहत के दीवाने हुए हम,
0: और बोला फिर वो
1: जान तमन्ना किधर जा रही हो।
0: ड्रेस पे, लेकिन आज मेरे ड्रेस पे जो है मेरी ड्रेस, मैंने हॉट पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, उसके ऊपर 3D बटरफ्लाइज जो है वो बनी हुई है। सो यार जी अविनदास
2: T20 स्कोर अपडेट presented by
3: Luke's Cafe, sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul pass. Madar Kadim Bakra VFS Global ke site, Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real siksa. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tower Mall and Mall of Qatar.

0: 106.3 FM. ये है Radio Olive.
1: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it. ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान.
2: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल.
1: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस. तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में. योर Ultimate Eid destination.
3: Salaam, pranam, namaskar, vanakkam. I am Jackie Shroff, Radio Olive, Bolo Bindas.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: हाँ जी, इसकी जात में दीवाने बजा रहे हो।
1: दीवाने हुए हम
0: जी,
1: दीवाने हुए हम। दीवाने
0: कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज। सात बज के 18 मिनट और 40 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। अगर आप किसी के प्यार में दीवाने हैं, किसी से बहुत सारा प्यार करते हैं, तो उसको गिफ्ट जो है वो भी प्यार भरी आपको देनी होती है ना, उसके लिए आप स्पेशल जो है वो सोचते हैं। सो मलाबार गोल्डन डायमंड्स जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आया कि अगर आपके सामान स्पेशल को आपने गिफ्ट दी थी बहुत टाइम पहले, या फिर उनकी ज्वेलरी अभी पुरानी हो चुकी है, तो आप चाहते हैं यार अभी तो मार्केट में नए डिजाइन आ गए हैं यार, तो नए डिजाइन के साथ आप ना एक्सचेंज करवा सकते हैं ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी। बस आपको जो है वो मेकिंग चार्जेस जो है वो पे करने होंगे, और उसके साथ साथ आप जो अभी इंपोर्ट ड्यूटी जो रिविजन इन इंडिया है, उसकी वजह से आप यहां पर कतर में 15% गोल्ड प्राइजेस पे जो है वो सेव कर सकते हो। सो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के पास जाने का आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज हैं, तो आप जब भी आपका मन करे, अभी तो ईद की छुट्टी है, तो आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं और ये फायदा करवा सकते हैं यार अपना।

0: पता नहीं कौन सा गाना है.
1: नहीं पता है तो फिर आएगा थोड़ी देर में. सुन रही है रेडियो ऑलिव और गेदर ये जियो बिंदास.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: इस ईद बनाए हर पल यादगार
1: विद रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
0: स्टे ट्यून्ड
2: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Shackman ki power-packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
7: This hour is brought to you by
8: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: स्टूडियो की घड़ी पे
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: कभी कभी ना कुछ लोगों को बहुत ज्यादा करने की आदत होती है, कोई उनके लिए थोड़ा सा भी कर देना, थोड़ा सा भी मतलब उनके लिए कर दे तो आप उसका बहुत ज्यादा करते हो, मतलब उसकी सारी चीजों का ध्यान रखना, उसके लिए सरप्राइज करना या उसको गिफ्ट देना या छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। क्या होता है कि जब आप किसी के लिए बहुत सारा करते होते हो ना, तो सामने वाला फिर आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। तो आपके एफर्ट जो आप लगा रहे हो ना, जो कि आजकल कोई किसी के लिए नहीं लगाता है, मेरे लिए कोई अगर ज्यादा एफर्ट लगा रहा है तो मेरे को लिटरली ऐसे होता है कि भाई क्यों, कोई काम है क्या? क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में धीरे धीरे जब आपकी एडल्टिंग होती है ना, आपको समझ लगती है, आपको जिंदगी समझ लगती है, वो जो बातें मम्मी किया करती थी ना, फिर आपको जिंदगी की समझ जो है वो लगने लग जाती है ना, कि आपके एक आध दोस्तों को छोड़ के, आफ्टर ऑफकोर्स आफ्टर योर फैमिली मेंबर, आपके एक आध दोस्तों को छोड़ के कोई आपका जो है ना वो कोई अलग से करता है तो आपको थोड़ा सा ऐसा होता है। तो कोई आपका अगर बहुत ज्यादा कर रहा है ना आज के टाइम पे, कोई आपकी केयर कर रहा है, आपके लिए एफर्ट लगा रहा है, भाई साहब, तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया वाली बात है। तो कोई इंसान अगर आपके लिए एफर्ट लगा रहा है तो उसको फॉर ग्रांटेड मत लो, जितना वो आपका कर रहा है ना ज्यादा करो यार। अगर वो इंसान अच्छा है, ऐसे लोगों को रखो अपनी जिंदगी में। श्योर अभी मैं जो जिसके बारे में इस रियलिटी चेक में बात कर रही हूँ, कोई ना कोई चेहरा आपके जहन में जरूर आ गया होगा। थोड़ी ही देर में तो उस इंसान को थैंक यू बोल देना यार, क्योंकि कोई नहीं करता किसी के लिए, किसी को कोई उठा के ग्लास पानी का भी नहीं देगा आज के टाइम में। अगर कोई कर रहा है आपका तो अच्छा है यार, बट मेक श्योर कि उसके पीछे उसका कोई मोटिव ना हो, ये बड़ा डर लगता है यार। एक तो

0: Happiness, enjoy. On Radio Olive 106.3 FM. Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand, R&B, has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
2: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million riyals cash prizes.
1: Jeetne ke 4 raaste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 riyals growth par paiye ek coupon.
2: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
1: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 mahine regular salary par paiye ek extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
3: इब्राहिम भाई
4: ईद मुबारक
3: तौफीक चाचा ईद मुबारक
5: आप
3: चाचा मैं इब्राहिम हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को
5: अरे मियां तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं तब आप भूल गए बिरयानी भी
6: एक काम करते हैं इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं
7: हेलो हेलो तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां
8: क्यों चचा
9: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ
10: एक मिनट रुको एक बात शायद आप भूल गए बेटा ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीप डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Selva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki toh baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ।
9: This hour is brought to you by
10: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

रहे हो कितना दिखिया जल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। तो फिर क्विकली मैं आपको बता देती हूँ हम लोगों को क्या सिखाया गया। गोट, गोट का मतलब क्या होता है? बकरी होता है, राइट? तो गोट जो है उसका मतलब ये नहीं होता, लेकिन जेन जी डिकोडेड जो है इसमें आप आज का वर्ड जो डिकोड कर रहे हैं वो है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जो हमको स्कूल में सिखाया गया वो अलग बात है, लेकिन जेन जी लिंगो जो है वो टोटली अलग है यार। एंजॉय करो, थोड़ी देर में प्रेयर का टाइम होने वाला है, सो मैं वापस लौट रही हूँ।

0: का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
1: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM
2: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर Visit Malabar Golden Diamonds today.
3: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

0: करते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: This hour is brought to you by
3: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

जाओ ना थक गई है जिंदगी सो जाओ। कभी कभी हमारी बॉडी को बहुत सारी रेस्ट की जरूरत होती है लेकिन हमको रियलाइज नहीं होता है ना, एकदम से फिर मूड स्विंग्स आते हैं, हर चीज पे गुस्सा आता है, फोकस जो है वो लगना बंद हो जाता है। जब एक अच्छी नींद के बाद ना फिर सब सेट हो जाता है यार। तो अपनी बॉडी को समझो, आपको ईद की छुट्टियां मिली हुई है, एक दिन रेस्ट का भी जरूर रखना। 8:17:25 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है, मैच चल रहा है, एकदम धमाधम मैच, धुआंधार मैच बोलना चाह रही थी, धमाधम हो गया, लेकिन दैट्स ओके, आप मुझे समझते हो ना यार। बेंगलुरु और गुजरात का मैच चल रहा है और बेंगलुरु ने पहले खेलते हुए 255 का रन का तगड़ा जो है वो टारगेट रखा एंड गुजरात अभी खेल रही है 68 बॉल पे, उनको 190 रन बनाने हैं, 6 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं। सो यस, ये है मैच के हाल।

0: याद रहनी भी चाहिए, मैं जेन में रहनी चाहिए यार। ओके, अभी वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली हूँ। जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, अपना नाम टाइप करके रखो, जैसी बोलूं भेज देना आप मुझे।
1: Presented by
2: Duke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi, ab bilkul pass. Madar Kadeem, Bakra, VFS Global K side, Oak Banafi, Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
2: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar. Awesome. Radio Olive par. Aane wala gaana, cool song of the hour.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: This hour is brought to you by
4: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

हां जी जी मेरी सुनियो कि हलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर तुहाडे ना

हमेशा हद से गुजरता है यार, उसके लिए थैंक यू है यार। उसी प्यार के लिए फटाफट से नेम गेम खेल रही हूँ। अपना नाम मुझे बता दो कि आपका नाम क्या है, और अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दो ताकि मैं रेडियो पे अभी के अभी बोल पाऊँ। तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063, 3311063। चलिए अब मैं नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। आशिक हसन, गुज्जर, अब्दुल सैफ, आसमा, मनोज, सफदर, राबिया, सलीम, रिफत, राकेब हुसैन, ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक दोस्त, मोहम्मद यूसुफ, आमिर, शैंकी, रितु, सईद, रकीब हुसैन। सिर्फ दोस्तों नाम लिखो यार, ईद मुबारक लिख रहे हो ना तो आपके नाम गायब हो रहे हैं। स्मिता सेजू, थैंक यू सो मच। वेदांशी, थैंक यू सो मच। हुसैन जी, रिफत हुसैन, ऑलरेडी मैंने आपका नाम जो है बोल दिया है। पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच। देवांशी, रिफत, श्रीधर, सुमित्रा, सुमीरा, एरिन, उमीशा, शबी, जरून, जोहान, मरियम, अफसर शेख जी, श्रीधर जी, शोएब जी, अफसर शेख जी, उमीशा, ऑलरेडी मैं आपका नाम बोल चुकी हूँ, उमांश जी, उमांश बड़ा प्यारा नाम है यार आपका, थैंक यू सो मच। मोहम्मद जी आपके मैसेज के लिए, हृदय थैंक यू सो मच आपके, सुभाष जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रिपू जी थैंक यू सो मच, सूरज जी थैंक यू सो मच, संजय यादव जी थैंक यू सो मच, सोजिब जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, जयवंत जी थैंक यू सो मच, अब जिनके नाम रह गए हैं कल फिर से ले लेंगे यार। अब थैंक यू के साथ अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के भेज दो यार।

0: Radio Olive. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
2: Eid Mubarak.
3: Taufik chacha, Eid Mubarak.
4: Aap?
3: Chacha, main, Ibrahim.
2: Har jumme raat aata hu
3: tumhari biryani khane ko.
4: Are miyan, Taufik chacha ko kuch bhi yaad nahi. Tab aap bhool gaye. Biryani bhi.
5: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
6: ए, हलो हलो, तौफिक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां। क्यों चचा?
7: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
8: एक मिनट रुको, बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीप, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki toh baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट, अब बिन उमरान में।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ।
9: This hour is brought to you by
10: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

पंस में, बाकी तो कल आके बोलेंगे यार। जी मैं कहती सुनियो किधर की हलचल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। अब सिमरन कौर के ऐसी कल्टी माने का टाइम आ चुका है, लेकिन कल से शोज थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि अगले तीन दिन के लिए आप ईद मजलिस सुनेंगे सारे शोज में। ईद मजलिस में माहौल बनेगा एकदम बढ़िया वाला, म्यूजिक बढ़िया वाली, बातें आपके लिए ऑन ड्यूटी सर ईद पे, ठीक है? आपको अकेला फील नहीं होना चाहिए। सो बाकी की बातें कल शाम को 5 बजे आके मैं ईद मजलिस में करने वाली हूँ। और अभी क्लब ऑलिव एंजॉय करिए, आज से लेके आप फ्राइडे तक क्लब ऑलिव जो है वो सुनने वाले हैं, ताकि अगर आप बाहर निकले हुए हैं तो आप माहौल जो है वो बना रहे म्यूजिक का। सो ईद मुबारक इन एडवांस। खांदे बिंदे रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे दे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो। रेडियो

0: 106.3 FM. You're listening to Club Olive.
1: एवरीवन, मैं हूं आपकी कशिश। और इस ईद पर भले ही आप अपने घर से दूर हैं, लेकिन आपकी फैमिली से नहीं, क्योंकि रेडियो ऑलिव है ना, सो बस रेडियो ऑलिव की फैमिली की

0: Don't go anywhere. There is more hits on the way.
1: Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.
2: ईद पर रूठों को मनाओ, खुशियां बांटो और बिरयानी बनाओ। रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक।
3: बाटी थोड़ी सी खुशियां थी, दो गुना पाई है।
0: You are listening to

0: Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.
1: त्योहारों पर पराये भी अपने बन जाते हैं. आओ साथ मिलकर ईद मनाते हैं. आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक.
2: बाटी थोड़ी सी खुशियाँ थी, दो गुना पाई है.
3: रेडियो ऑलिव 106.3

जैसे बिरयानी बांटे बिना खाई नहीं जाती, वैसे ही ईद की खुशियां बांटे बिना मनाई नहीं जाती। आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से

0: Radio Olive 106.3 FM.
1: This is Club Olive. Club Olive.
2: Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.
3: ईद पर रूठो को मनाओ, खुशियां बांटो और बिरयानी बनाओ। रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक।
4: बाटी थोड़ी सी खुशियां थी, दो गुना पाई है।
5: मॉर्निंग से नाइट

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।
3: दिल भारी है और घर की याद भी आ रही है। एक और ईद बीत जाएगी अपनों से गले लगे बिना। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, सपनों की तैयारी जारी है। रेडियो ऑलिव की तरफ से उन्हें भी ईद मुबारक हो जो घर से दूर हैं और

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: हाय दिस इज अनीशा, मुस्कुराहट मोहब्बत और बरकत के साथ आपको ईद की

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: त्योहारों पर पराए भी अपने बन जाते हैं, आओ साथ मिलकर ईद मनाते हैं। आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक।
3: बाटी थोड़ी सी खुशियाँ थी दो गुना पाई है।
4: हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी कशिश और इस ईद पर भले ही आप अपने घर से दूर हैं लेकिन आपकी फैमिली से नहीं, क्योंकि रेडियो ऑलिव है ना, सो बस रेडियो ऑलिव की फैमिली की तरफ

0: हाय, मैं हूँ आजय सुदेव और आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, आज फिर से याद दिलाऊंगा, अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। ईद मुबारक, स्टे ट्यून्ड।
1: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: नसीम हेल्थ केयर विशेस यू ईद मुबारक।
1: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: मैं जैकी श्रॉफ, सबको ईद मुबारक और खुशियां हमेशा। रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी कशिश और इस ईद पर भले ही आप अपने घर से दूर हैं लेकिन आपकी फैमिली से नहीं, क्योंकि रेडियो ऑलिव है ना, सो बस रेडियो ऑलिव की फैमिली की तरह

आ रही है और घर की याद भी आ रही है। एक और ईद बीत जाएगी अपनों से गले लगे बिना। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, सपनों की तैयारी जारी है। रेडियो ऑलिव की तरफ से उन्हें भी ईद मुबारक हो जो घर से दूर हैं और

हाय, मैं हूँ आजय सुदेव और आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, आज फिर से याद दिलाऊंगा, अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। ईद मुबारक, स्टे ट्यून्ड।

जैसे बिरयानी बांटे बिना खाई नहीं जाती, वैसे ही ईद की खुशियां बांटे बिना मनाई नहीं जाती। आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से